नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दे ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन

और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।

0: किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल है। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर सही गुणवत्ता की सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने याद दिलाया कि जेम से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 111 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबिलार्डो डेला एस्प्रियला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चौको क्षेत्र के सेन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देश भर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे 6000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खातों में भेजी गई। कृषि विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप हर महीने सीधे बैंक खातों में मिलेगी। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान दिया चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष 2 टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगी। ये प्रतियोगिता 15-30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ इस खूबसूरत सी सुबह में लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम।
1: सुबह की शुरुआत आपके साथ, सुन रहे हैं सुहानी सुबह, सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।
0: जी हाँ, सुहानी सुबह है प्रोग्राम का नाम और मैं हाजिर हो गई हूँ 100.1 FM गोल पर इस खूबसूरत से सुबह में। सुबह सुबह आते वक्त, कल रात को इतनी बारिश हुई, आज सुबह सुबह आते वक्त ऐसा लगा जब धूप निकली तो सच में जैसे किसी पेंटर ने पेंट किया हो, हर एक जगह बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। फिलहाल ऐसे एक पॉजिटिव थॉट के साथ चलिए पहले गाने से हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

इस खूबसूरत से गाने के बाद चलिए दिन की शुरुआत करते हैं, हाथ में एक प्याली चाय लिए कुछ आज की न्यूज हेडलाइन से। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस आने ही वाले, तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर पंजाब में काफी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आने वाले 15 अगस्त के मद्देनजर पंजाब के डीजीपी ने अमृतसर बॉर्डर रेंज की सीमावर्ती इलाकों के साथ साथ जालंधर, लुधियाना और अन्य जिलों में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समारोह स्थल, सार्वजनिक भीड़ वाले स्थानों पर प्रभावी और दिखाई देने वाले पुलिस तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए, ताकि लोग सुरक्षित माहौल में स्वतंत्रता दिवस मना सके। इसी बीच अमृतसर और जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने अलग अलग अभियानों में हथियार और मादक पदार्थ भी बरामद किए हैं। अमृतसर पुलिस ने दो बड़े सीमा पार ड्रग्स और अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास 10 पिस्तौल, जिंदा कारतूस और एक ड्रोन के साथ 1 किलोग्राम से अधिक हीरोइन भी बरामद हुई है। बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर, जो है कोलंबिया से। जी हाँ, कोलंबिया में भीषण भूकंप से भारी तबाही की खबर है। देश के पश्चिमी हिस्से में

7.4 तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप आया है कल, जिसमें 47 लोगों की मौत भी होगी जबकि दर्जनों इमारतें ढह गई। कई लोग मलबे में फंसे हैं, बड़ी संख्या में लोग घायल भी हैं। भूकंप के झटके राजधानी बोगोटा तक महसूस किए गए, जिसके बाद लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण और कोलंबिया की एजेंसी के मुताबिक भूकंप का केंद्र चोको क्षेत्र के सैन जोसो डेल पाल्मर में था। ये इलाका बोगोट से करीब 250 मील पश्चिम में स्थित है और यहाँ लगभग 4,800 लोग भी रहते हैं। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप करीब 67 मील की गहराई में आया। इसके झटके पड़ोसी देश इक्वाडोर में भी महसूस किए गए। राहत और बचाव अभियान अभी जारी है और मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश भी की जा रही है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और बढ़ते हैं अगले गाने की ओर, सीधे किशोर कुमार की आवाज में।

हमारे तीसरे खबर की ओर। देश में बेरोजगारी दर को लेकर नई तस्वीर सामने आई है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जून तिमाही में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की शहरी बेरोजगारी दर मामूली बढ़कर 6.7% हो गई है, जो पिछली तिमाही में 6.6% थी। वहीं ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी 4.3% से बढ़कर 4.8% हो गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के मुताबिक हालांकि शहरी महिलाओं की बेरोजगारी दर में सुधार हुआ, ये पिछली तिमाही की 9.1% से घटकर 8.7% रह गई है। और इसी बीच 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की कुल श्रम बल भागीदारी भी 55.5% से घटकर 54.6% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें गिरावट भी दर्ज हुई है। चलिए अगली खबर की ओर। और अगली खबर है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप से, जहां जहां भारत की युवा शटलर आयुष शेट्टी के सामने कड़ी चुनौती है। टूर्नामेंट के पदार्पण कर रहे 21 वर्षीय आयुष का पहले ही दौर में मुकाबला दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन चीन के शी यू ची से होगा। आयुष अब तक शी के खिलाफ 3 मुकाबले खेल चुके हैं और तीनों में उन्हें हार मिली है। इनमें सबसे हालिया मुकाबला एशियन चैंपियनशिप के फाइनल का था, लेकिन आयुष इस बार पूरी तैयारी के साथ उतरने को तैयार है। उनका कहना है कि ये उनके लिए एक और मैच है, हालांकि वो जानते हैं कि मुकाबला बेहद कठिन होगा। आयुष ने कहा कि उन्होंने पिछली सभी भिड़ंत का विश्लेषण किया और इस बार उन्हें रणनीति के स्तर पर बेहद अच्छा होना होगा। उन्हें थॉमस कप और एशियन चैंपियनशिप में अच्छे प्रदर्शन से मिले आत्मविश्वास को भी अहम बताया। खास बात यह कि शी यू ची हाल ही के मुकाबलों में अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं रहे। वहीं आयुष अपनी कोहनी की चोट से पूरी तरह से उबर चुके हैं। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 100% फिट होकर उतरने का भरोसा भी जताया है। देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल बढ़ेंगे अगले खबर की ओर, पर उससे पहले सुन लेंगे अगला गाना शमशान बेगम की आवाज में।

चलिए अब ऑलमोस्ट न्यूज़ का जो सेक्शन है वो ख़त्म हो चला है, तो फिलहाल दो और न्यूज़ मेरे को मुझे दिख रहा है। फिलहाल इम्पोर्टेंट काफ़ी न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी है, तो बता ही देते हैं, शेयर कर लेते हैं आपसे। दोस्तों देश में जल संरक्षण को लेकर मिशन अमृत सरोवर के तहत बड़ी प्रगति दर्ज की गई है। सरकार ने राज्यसभा में बताया कि देश भर में अब तक 68,827 अमृत सरोवर बनाए या पुनर्जीवित किए जा चुके हैं। इनका इस्तेमाल जल संरक्षण, सिंचाई, मछली पालन, जैव विविधता बढ़ाने और स्थानीय लोगों को आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। जलाशयों की आसपास हरियाली बढ़ाने के लिए 24 लाख से ज्यादा पौधे भी लगाए गए। जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री के ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण के उद्देश्य से 24 अप्रैल 2022 को मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत की थी। मिशन के असर की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट आधारित सिस्टम भू प्रहरी के जरिए की जा रही है। 2022 से 24 के विश्लेषण के मुताबिक कम बारिश के बावजूद औसत तालाब के क्षेत्र में 16.3% की बढ़ोतरी हुई, जबकि सूखे तालाबों की संख्या 42% घटी। अरुणाचल प्रदेश, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में किए गए आंकलन में भूजल रिचार्ज, खेती योग्य जमीन, कृषि उत्पादकता और जैव विविधता पर भी सकारात्मक असर सामने आए हैं। और अगली खबर कुछ यूं है कि भारत में एशियाई शेरों की संख्या में अब रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। विश्व शेर दिवस के अवसर पर पर्यावरण मंत्री ने बताया कि देश में एशियाई शेरों की आबादी वर्ष 2015 से 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है, यानी पिछले 10 वर्षों में शेरों की संख्या में 368 की बढ़ोतरी हुई है। एशियाई शेरों की बढ़ती आबादी और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ये तो इसी बात पर सुन लेते हैं हमारा अगला गाना और उसके बाद सीधे चलेंगे कोलकाता के मौसम के बारे में बातें करने।

तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कोलकाता के मौसम का हाल क्या कहता है। आज भी आसमान में बादल तो छाए रहेंगे, साथ ही साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की गुंजाइश भी बताई जा रही है और बादल भी गरजने वाले हैं। वैसे अधिकतम तापमान रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। बात करें अगर पिछले 24 घंटों की, तो पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान रहा 33.2 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। न्यूनतम तापमान रहा 25.7 डिग्री।

सेल्सियस जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस कम था। अधिकतम नमी रही 99% और न्यूनतम नमी रही 60%। और पिछले 24 घंटों में आए अलीपुर मौसम विभाग के अनुसार 62.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण बंगाल में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी और कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश भी होती रहेंगी और मछुआरों के लिए भी खास चेतावनी जारी की गई है। पश्चिम बंगाल और उत्तर ओडिशा के तटों के आसपास 11 से 14 अगस्त तक 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, कभी कभी 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना भी बताई जा रही है। इस दौरान मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, छाता साथ रखिए, गरज चमक के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचिए और मौसम के ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

जी हाँ, हमारी और आपकी दोस्ती भी ऐसे ही जन्मों जन्मांतर चलती रहे, यही ख्वाहिश है। इस गाने को सुनने के बाद तो कुछ ऐसा ही नहीं। फिलहाल चलिए आज के इतिहास की ओर सीधे चलते हैं, क्योंकि दोस्तों तारीखों के पन्नों में हर दिन अपनी एक कहानी होती है, और आज यानी 11 अगस्त का दिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी ख़ास है। जी हाँ, आज ही के दिन साल 1949 में जन्म हुआ था देश के एक ऐसे इंसान का जिन्होंने मुश्किल वक्त में भारत को के खजाने और अर्थव्यवस्था की कमान संभाली थी। जी हाँ, आज है जन्मदिन दुवरी सुब्बराव यानी डी सुब्बराव जी की, जो भारतीय रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर रहे। तो आप सोच रहे होंगे कि इनमें ऐसी क्या खास बात थी, तो सुनिए, डी सुब्बराव जी सिर्फ एक अर्थशास्त्री नहीं थे बल्कि 1972 बैच के आईएएस टॉपर भी थे। साल 2008 में जब उन्होंने आरबीआई गवर्नर का पद संभाला, ठीक उसी वक्त पूरी दुनिया 1930 के बाद से सबसे बड़ी आर्थिक मंदी यानी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी। दुनिया भर के बैंक डूब रहे थे, लेकिन सुब्बराव जी दूरदर्शिता और मजबूत नीतियों की बदौलत भारतीय बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित तैरता रहा। इतना ही नहीं, भारत में बैंकिंग को आम आदमी तक पहुंचाने और आम जनमानस के वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने का श्रेय भी काफी हद तक उन्हीं को जाता है। वही 1954 में आज ही के दिन यानी 11 अगस्त को पंजाब के लुधियाना में जन्म हुआ था भारतीय क्रिकेट के उस अनाम नायक का, जिसने 1983 के वर्ल्ड कप में भारत को चैंपियन बनाने में रीढ़ की हड्डी का काम किया, यशपाल शर्मा। 1983 के वर्ल्ड कप के बाद जब भी होती है तो लोगों को कपिल देव की 175 रनों की पारी याद आती है, लेकिन उस वर्ल्ड कप का आगाज और अंजाम यशपाल शर्मा के बल्ले के बिना अधूरा था। वेस्टइंडीज के खिलाफ टूर्नामेंट के पहले ही मैच में जब भारत मुश्किल में था, तब यशपाल जी ने 89 रन की जुझारू पारी खेलकर दो बार के चैंपियन वेस्टइंडीज को धूल चटाने में की नींव रखी। फिर इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनकी 61 रनों की मैच विनिंग पारी को भला कौन भूल सकता है। मैदान पर गेंद की कवर्स के ऊपर से फ्लिक करने का उनका अनोखा अंदाज और विकेट के बीच तेज दौड़ उन्हें एक बेहद खास बल्लेबाज बनाती थी। भारत के लिए 37 टेस्ट और 42 वनडे खेलने वाले यशपाल जी बाद में राष्ट्रीय चयनकर्ता भी रहे, और 2011 के वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम को चुनने में भी उनकी अहम भूमिका रही। तो 11 अगस्त और आज का दिन भारतीय सिनेमा के साहित्य के इतिहास में भी काफी खास है। आज जन्मदिन है मलयाली फिल्म के दिग्गज और क्रांतिकारी निर्देशक जॉन अब्राहम जी का। जी हाँ दोस्तों, जब भी भारतीय सिनेमा में लीग से हटकर बनी फिल्मों का जिक्र होता है तो जॉन अब्राहम जी का नाम सबसे ऊपर आता है। फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे के गोल्ड मेडल जीतने वाले जॉन साहब ने फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि आम जनता की आवाज बनाया। उनकी सबसे मशहूर फिल्म अम्मा अरियन सिनेमा इतिहास की पहली ऐसे फिल्मों में से एक थी जिसे बनने के लिए उन्होंने अपने आम लोगों से गांव-गांव जाकर छोटा छोटा चंदा इकट्ठा किया। वो मानते थे कि सिनेमा पर बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स का नहीं बल्कि जनता का हक होना चाहिए। अपनी फिल्मों और कहानियों के जरिए उन्होंने हमेशा समाज के आम इंसान की बात रखी। तो आज के इतिहास में इस महान फिल्मकार और लेखक को हमारा सलाम। आप सुनते रहिए और बने रहिए, और जल्द लौटते हैं वापस इतिहास में एक खूबसूरत गाने के बाद।

इस प्यारे से गाने के बाद एक बार फिर से इतिहास में, आज के इतिहास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुहानी सुबह के अंतर्गत 11 अगस्त और आज का दिन भारतीय शास्त्रीय संगीत और कला जगत के लिए बेहद पावन और ऐतिहासिक दिन भी है। आज जयंती है भारतीय संगीत के महान विद्वान और विचित्र वीणा के जादूगर डॉक्टर लालमणि मिश्र जी का। दोस्तों, डॉक्टर लालमणि मिश्र जी एक ऐसे संगीत साधक थे जिनकी विद्वता और कला का कोई सानी नहीं था। उन्होंने हमारी प्राचीन संगीत में धरोहर साम वीणा को ढूंढ कर फिर से जीवित किया। विचित्र वीणा पर जब उनकी उंगलियां चलती तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वे सिर्फ एक कलाकार नहीं थे बल्कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के डीन के रूप में उन्होंने सैकड़ों संगीतकारों की पीढ़ियों को तराशा। उन्होंने संगीत पर जो शोध ग्रंथ लिखे वे आज भी संगीत की दुनिया में एक गाइड बुक की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज के इतिहास में भारतीय संगीत को समृद्ध करने वाले इस महान मनीषी को हमारा शत शत नमन। 1999 में आज के दौर में यानी 11 अगस्त के महीने में इनके दिन दुनिया ने 20वीं सदी का सबसे अद्भुत अंतिम संपूर्ण सूर्य ग्रहण देखा था जिसका नजारा यूरोप से लेकर एशिया तक फैला हुआ था। 11 अगस्त 1999 को इस ऐतिहासिक सूर्य ग्रहण को देखने के लिए दुनिया भर में करोड़ों लोग छतों पर वेदशालाओं में उमड़ पड़े थे। ब्रिटेन से शुरू होकर यूरोप के कई देशों, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, भारत से गुजरते हुए इस ग्रहण ने दिन में ही रात का एहसास करा दिया था। भारत में भी गुजरात और मध्य भारत के कई हिस्सों में इसका विहंगम दृश्य देखा गया और ये 20वीं शताब्दी का आखिरी बड़ा सूर्य ग्रहण माना गया जिसे खगोलविदों ने आम लोगों के बीच में दोनों को ही एक आश्चर्य और कौतूहल से भर दिया था। और 11 अगस्त और आज के दिन हमारे देश के इतिहास और मानचित्र के लिए बेहद गौरवशाली दिन भी है। आज ही के दिन 1961 में दादरा और नगर हवेली का औपचारिक रूप से भारत में विलय हुआ और इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित भी किया गया था। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब दादरा और नगर हवेली पर आजादी का सूरज नहीं उगा था, वह पुर्तगाली शासन का कब्जा था। लेकिन 1954 में देश के जाबाज स्वतंत्रता सेनानियों और स्थानीय लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर पुर्तगालियों को खदेड़ बाहर किया। सबसे दिलचस्प बात यह कि 1954 से 1961 तक पूरे 7 सालों तक यहां की जनता अपनी एक वरिष्ठ पंचायत बनाई और खुद शासन चलाया। फिर आज ही के दिन यानी 11 अगस्त 1961 को भारतीय संसद ने 10वां संविधान संशोधन पारित करके इसके आधिकारिक रूप से भारत का अभिन्न हिस्सा बना लिया। तो आज के इतिहास में देश की अखंडता और भारत माँ के उस ऐतिहासिक पन्नों को हमारा सलाम। फिलहाल चलते हैं, सुन लेते हैं अगला गाना, उसके बाद फिर वापस बातें होंगी ढेर सारी।

दोस्तों आज 11 अगस्त और आज के दिन दुनिया की सैन्य राजनीति और परमाणु इतिहास का एक बेहद संजीदा और ऐतिहासिक मोड़ के रूप में याद किया जाता है। आज के दिन साल 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ यानी USSR ने बड़ा भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। दोस्तों ये वो दौर था जब दुनिया दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की गर्मी महसूस कर रही थी। दोनों ही देश अपने सैन्य ताकत का लोहा मनवाने के लिए नए नए हथियारों और परमाणु मिसाइलों का परीक्षण कर रहे थे। 11 अगस्त 1984 को सोवियत संघ ने जमीन के सैकड़ों फीट नीचे ये धमाका करके अपने परमाणु क्षमता का प्रदर्शन किया था। इस परीक्षण के झटके सिस्मोग्राफ पर दर्ज हुए तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और कूटनीतिज्ञों के नजरे सोवियत संघ पर टिक गई। इस घटना ने उस दौर में परमाणु अप्रसार और वैश्विक शांति को की बहसों को और तेज कर दिया। तो आज के इतिहास में विश्व इतिहास के उस बड़ी शक्ति प्रदर्शन और ऐतिहासिक घटना को यादों का सलाम। और आज के दिन वैश्विक खेल इतिहास की उम्मीद, एकजुटता और नई शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। आज से ठीक कुछ साल पहले अगस्त के इन्हीं दिनों में द्वितीय विश्व युद्ध के काले बादलों के छटने के बाद पहली बार ओलंपिक खेलों की वापसी हुई थी। 12 सालों तक चले युद्ध और तबाही की वजह से 1940 और 1944 के ओलंपिक खेल रद्द कर दिए गए थे, लेकिन 1948 में जब लंदन के इन खेलों की मेजबानी की तो पूरी दुनिया के खिलाड़ियों के चेहरे खिल उठे। संसाधनों की कमी की वजह से खिलाड़ियों को कोई लग्जरी नहीं मिली, लेकिन खेल के प्रति उनका जज्बा देखने लायक था। और हमारे भारत के लिए ये ओलंपिक स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। 1948 के इसी लंदन ओलंपिक में आजाद भारत ने पहली बार अपने तिरंगे की पहचान के साथ हिस्सा लिया और हमारी हॉकी टीम ने ब्रिटेन की सरजमी पर हरा कर आजाद भारत का पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया था। तो आज का इतिहास में उम्मीद है, उम्मीद और जीत के इस ऐतिहासिक पन्ने को हमारा

Bella. तो फिलहाल समय हाथ में काफी कम है, तो सीधे चले क्या आज के दिन के बारे में जान लेते हैं, क्यों है आज का दिन इतना खास। दोस्तों आज है तारीख 11 अगस्त। इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती है जो महज पन्नों पर दर्ज नहीं होती, बल्कि जब जब उनका जिक्र आता है तो रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज एक ऐसा दिन है, देश के सबसे कम उम्र के निडर और अमर क्रांतिकारी शहीद खुदीराम बोस जी का बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए 18 साल की उम्र में आज का युवा क्या कर रहा होता है। करियर की चिंता, कॉलेज की मस्ती या सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग। लेकिन आज से ठीक 118 साल पहले यानी 1908 में इस 18 साल 8 महीने और 8 दिन के नौजवान की आंखों में सिर्फ एक

जाबाजों को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाखी। 30 अप्रैल 1908 की रात मुजफ्फरपुर क्लब के बाहर अंधेरे में इंतजार करते हुए जैसे ही किंग्सफोर्ड की बग्गी बाहर निकली, खुदीराम ने बिना झिझक उस पर बॉम्ब फेंक दिया। बग्गी के परखच्चे उड़ गए। हालांकि बदकिस्मती से उस बग्गी में किंग्सफोर्ड नहीं था बल्कि दो निर्दोष अंग्रेज महिलाएं सवार थी जिनकी मौत हो गई। घटना के बाद खुदीराम नंगे पैर बिना कुछ खाए पिए रात भर 25 मील यानी लगभग 40 किलोमीटर दौड़ते हुए वैनी रेलवे स्टेशन पहुंचे, जो कि आज खुदीराम बोस पूसा स्टेशन के नाम से जाना जाता है। वहां एक दुकान पर पानी पीते हुए जब उन्होंने दो पुलिस वालों को उस घटना की चर्चा करते सुना तो उनके मुंह से अचानक निकल गया, क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? बस इतना सुनते ही पुलिस चौंक गई, उन्हें घेर लिया गया। खुदीराम ने अपनी रिवॉल्वर निकाली लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें दबोच लिया। इसके बाद जो हुआ उसने अंग्रेज हुकूमत के होश उड़ा दिए। जब खुदीराम को मुजफ्फरपुर अदालत लाया गया तो उनके चेहरे पर न तो कोई डर था न पश्चाताप, बल्कि एक अनोखी मुस्कान थी। जब जज ने फांसी की सजा सुनाई तो खुदीराम मुस्कुरा दिए। जज परेशान हो गया कि उसने पूछा, क्या तुम्हें समझ आया कि तुम्हें फांसी की सजा दी गई? खुदीराम ने हंसकर कहा, हाँ हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह समझ आ गया और अगर आप मुझे थोड़ा समय दे तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूँ। ये सुनकर पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। 11 अगस्त 1908 की सुबह मुजफ्फरपुर जेल का नजारा देखने लायक था। जेल के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। 18 साल का यह शेर हाथ में श्रीमद् भगवद गीता लिए होठों पर वंदे मातरम का जय घोष करते हुए मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ा और कुछ ही पलों में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया। उनकी शहादत ने पूरे हिंदुस्तान की रगों में वो आग भर दी कि उस दौर में बंगाल के बुनकरों ने एक खास किस्म की धोती बुननी शुरू की जिसके किनारे पर रेशमी धागों से लिखा होता था खुदीराम। उस जमाने का हर नौजवान उस खुदीराम धोती को पहनकर गर्व से सड़कों पर निकलता था। इतना ही नहीं, एक बेहद मशहूर बंगाली लोकगीत हर जुबान पर छा गया, एक बार बिदाई दे मां घुरे आशी। तो आज के इतिहास में देश की आजादी के लिए इतनी कम उम्र में हंसते हंसते अपनी जान न्योछावर करने वाले अमर शहीद खुदीराम बोस जी को हमारा कोटि कोटि नमन। उनकी ये शहादत हमें याद दिलाती है कि हमारी आजादी मुफ्त में नहीं मिली, इसके पीछे न जाने कितने शेरों का खून बहा है। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 100.1 FM गोल्ड ही। और जाते जाते भी अब जाने का ऑलमोस्ट समय हो चुका है सुहानी सुबह में, तो आज का दिन फिलहाल यहीं पे खत्म करते हैं और जाते जाते चलिए सुन लेते हैं सोनू निगम और हरिहरन के आवाज में सरफरोशी की तमन्ना। और बने रहिएगा हमारे साथ, यूं ही मिलेंगे ठीक 11:10 पर वापस लो आ गई उनकी याद में लेकर हेमा मालिनी की यादें। और 10:02 पर नॉनस्टॉप गपशप तो रहेगा ही, ढेर सारी बातें होंगी तब, तो रेडी रहिएगा। बिल्कुल फोन कॉल्स भी लेंगे और दिल की बातें भी करेंगे हम। फिलहाल के लिए 100.1 FM गोल्ड से मैं फिलहाल विदा लेती हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते।

0: विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है।
1: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
2: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। समाचार कक्ष से अमीषा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
3: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त चुनाव भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है।
4: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूँ, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक महासभा के सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।
0: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पाल्मा

0: में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
1: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी।
3: नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोराम्बा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखिरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।
0: कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वहीं अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने

0: संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H-1B और L-1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। हॉर्मुस जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी, हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Parliament passes Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman says digital payment system to remain free for consumers. Government notifies 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. Jharkhand student protest leader Devendra Nath Mahato hospitalized after his health deteriorates. BJP calls for Jharkhand Bandh today over lathi charge on students. At least 132 people killed following 7.4 magnitude earthquake in western Colombia. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Himachal Pradesh and East Rajasthan today. And India wins 17 medals, including 4 gold at Under-23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 after Rajya Sabha returned the money bill to Lok Sabha following discussion. The Lok Sabha had earlier passed the bill, which was then sent to Rajya Sabha for discussion. Since it is a money bill, Rajya Sabha can only make recommendations on its provisions and return it to the Lok Sabha, which may accept or reject those recommendations. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman made it clear that the legislation does not impose any tax on UPI and the digital payment system would remain free for consumers. The finance minister stated that the UPI-related amendment is only an enabling provision and does not itself impose any tax or transaction charge on users. Ms. Sitharaman also said that the government doesn't intend to impose any MDR charges on small merchants as they remain central to UPI's inclusive growth.
3: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection.

और आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवा नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता और पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत की विनिर्माण व्यवस्था को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना तथा विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहन देना है। वित्त मंत्री ने कहा कि विधेयक में डिजिटल लेन देन पर कोई कर या शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं लगाने का आश्वासन दिया। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 स्थल सीमा चौकियां और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी तथा अगरतला की स्थल सीमा चौकियां शामिल है। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में स्वीकृति दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल उचित गुणवत्ता, उचित मूल्य और उचित समय पर सही उत्पाद की खरीद दर्शाता है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10वें स्थापना दिवस पर ये बात कही। उन्होंने कहा

कहा कि जेम के आने से पहले सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे सुशासन की कमी थी। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक ऑर्डर से 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सामान और सेवाओं की खरीद में सहायता मिली है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP के माध्यम से पूरे देश के कृषि विद्यार्थियों के लिए छात्र

0: रांची में कल प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विधानसभा मार्च के दौरान झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो का तबियत बिगड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
1: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त नाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो डेला एस्प्रियला ने आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में था। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Shagun Chopra. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 after Rajya Sabha returned the money bill to Lok Sabha following discussion. The Lok Sabha had earlier passed the bill, which was then sent to Rajya Sabha for discussion. Since it is a money bill, Rajya Sabha can only make recommendations on its provisions and return it to the Lok Sabha, which may accept or reject those recommendations. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman made it clear that the legislation does not impose any tax on UPI and the digital payment system will remain free for consumers. The Finance Minister stated that the UPI-related amendment is only an enabling provision and does not itself impose any tax or transaction charge on users. Ms. Sitharaman also said that the government doesn't intend to impose any MDR charges on small merchants as they remain central to UPI's inclusive growth.
3: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced, and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
2: The government has notified 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. The Home Ministry said that it includes 9 land ports and 2 airports. This includes airports at Bhopal and Tirupati and land ports at Atari and Agartala. The ministry said that the addition of ports further enhances the attractiveness and utility of electronic visa. It noted that India provides approximately 95% e-visas applications in less than 72 hours. With the latest addition, the total number of international ports enabling entry of e-visa holder foreigners has increased to 88, including 37 airports, 38 seaports and 13 land ports. Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 and the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 for consideration and passing in the Lok Sabha today. Mr. Shah will move a motion for consideration of the bill seeking to alter the name of the state of Kerala. He will also move the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, which seeks to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1960.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवा नियुक्ति, प्रशासन तथा कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल विधेयक पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
1: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
0: सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि इनमें 9 स्थल सीमा चौकियां और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे तथा अटारी और अगरतला की स्थल सीमा चौकियां शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदकों को 72 घंटे से भी कम समय में स्वीकृति दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल उचित गुणवत्ता, उचित मूल्य और उचित समय पर सही उत्पाद की खरीद दर्शाता है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10वें स्थापना दिवस पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि जेम के आने से पहले सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे सुशासन की कमी थी। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल के माध्यम से 3

करोड़ से अधिक ऑर्डर से 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सामान और सेवाओं की खरीद में सहायता मिली है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो को तबियत बिगड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर बताई है। राज्य में

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। अमेरिका की संघीय अदालत ने भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आपराधिक आरोप खारिज किए। अमेरिका जल्द ही ग्रीन कार्ड, नागरिकता और शरण सहित कई आवर्जन लाभों के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य करेगा। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
1: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोता से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने द्वीप के आसपास चीन की सैन्य गतिविधि की सूचना दी है। अपनी नवीनतम दैनिक सुरक्षा रिपोर्ट में मंत्रालय ने कहा है कि स्थानीय समय अनुसार आज सुबह 6 बजे तक ताइवान के आसपास पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA की 2 विमानों, सेना, नौसेना PLAN के 7 जहाजों और 6 सरकारी जहाजों की गतिविधि देखी गई। इसराइल में भारत के राजदूत JP सिंह ने इसराइल की अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी माशाफ की प्रमुख एनात शलीन से यरूशलम में मुलाकात की। इस दौरान एजेंसी के माध्यम से भारत इसराइल विकास साझेदारी को अधिक विस्तार देने और उसे मजबूत करने पर बातचीत हुई। चर्चा में कृषि उत्कृष्टता केंद्रों, कृषि और जल प्रबंधन में क्षमता निर्माण और मत्स्य पालन में सहयोग के नए अवसरों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग पर विचार विमर्श किया गया। दोनों पक्षों ने साझेदारी को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका की संघीय अदालत ने भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आपराधिक आरोप खारिज कर दिए हैं। ब्रुकलिन स्थित अमेरिकी जिला न्यायाधीश निकोलस गैरोफिक्स ने संघीय अभियोजकों के मामले को रद्द करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया।
1: न्यायाधीश ने आरोप रद्द करने के कारणों पर स्पष्टीकरण मांगा था। अडानी द्वारा नवंबर 2024 में अमेरिका में $10 अरब के निवेश के वादे के इस फैसले को प्रभावित करने पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया था। न्यायाधीश गारोफिस ने इस बात पर संतोष प्रकट किया कि निवेश के वादे ने न्याय विभाग के फैसले में कोई भूमिका नहीं निभाई। उन्होंने कहा कि आरोपों को रद्द करने के अभियोजकों के फैसलों की समीक्षा करने में अदालतों की भूमिका सीमित है। गौतम अडानी ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण दौर में भी सत्य, निष्पक्षता और कानून के शासन में उनका विश्वास अटूट रहा। अडानी ने उन सभी लोगों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने उन पर न्याय व्यवस्था और भारत की न्याय क्षमता पर अपना विश्वास बनाए रखा। उन्होंने कहा कि अडानी समूह राष्ट्र निर्माण और बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमेरिका जल्द ही ग्रीन कार्ड, नागरिकता और शरण सहित कई आवर्जन लाभों के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य करने जा रहा है। ये कदम दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
2: अमेरिका की नागरिकता और आवर्जन सेवा VSCIS ने फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित नए नियम में कहा है कि जो फॉर्म कम से कम 180 दिन से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हैं, उन्हें ऑनलाइन जमा कराना अनिवार्य होगा। नए नियमों के अंतर्गत आवेदकों को कम से कम 60 दिनों का नोटिस देने के बाद उनके आवर्जन फॉर्म को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इन परिवर्तनों से ग्रीन कार्ड आवेदन और नवीनीकरण, पारिवारिक आवर्जन याचिकाएं, नागरिकता आवेदन, शरण दावे, रोजगार प्राधिकरण और अस्थायी संरक्षित स्थिति आवेदनों सहित कई आवर्जन लाभ प्रभावित हो सकते हैं। आवेदकों को अब USCIS ऑनलाइन खाते का उपयोग करना होगा। वे या तो फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं या सहायक दस्तावेजों के साथ भरे हुए फॉर्म की PDF फाइल अपलोड कर सकते हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: तुर्की की संसद ने हजारों कुर्द उग्रवादियों को सशर्त माफी देने वाले कानून को स्वीकृति दे दी है। इससे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के साथ शांति पहल को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इस कानून के अंतर्गत कुर्द उग्रवादियों के पूरी तरह से हथियार डालने पर ही माफी मिलेगी। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने पिछले वर्ष तुर्की सरकार के खिलाफ दशकों से चल रहे अपने सशस्त्र अभियान को खत्म करने की घोषणा की थी। ये फैसला जेल में बंद उसके नेता अब्दुल्ला उकलान के आह्वान के बाद लिया गया। इस निर्णय के बाद तुर्की और इराक के बीच संबंध मजबूत होने की संभावना है। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी।
1: नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोराम्बा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की AP स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने AP स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखिरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।
0: चीन का संचार उपग्रह ले जाने वाले रॉकेट का प्रक्षेपण नाकाम हो गया है। इसके कारणों की जांच की जा रही है। लॉन्ग मार्च 7A रॉकेट पर चीन सेट 4B उपग्रह को देश के दक्षिणी द्वीप हेनान से लॉन्च किया गया था। सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि उड़ान के दौरान रॉकेट में खराबी आ गई और मिशन नाकाम हो गया। मार्च 2020 में अपनी पहली उड़ान के बाद से लॉन्ग मार्च 7A की ये पहली ऐसी विफलता है जिसकी जानकारी सामने आई है। उस समय भी वेनचांग से प्रक्षेपण होने के बाद रॉकेट में खराबी आ गई थी। चीन ने लॉन्ग मार्च रॉकेट से सैकड़ों मिशन लॉन्च किए हैं। भारतीय और अमेरिकी नौसेना विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास 2026 कल केरलम के कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू हुआ। ये अभ्यास 14 अगस्त तक चलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। अमेरिका की संघीय अदालत ने भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आपराधिक आरोप खारिज किए। अमेरिका जल्द ही ग्रीन कार्ड, नागरिकता और शरण सहित कई आवर्जन लाभों के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य करेगा। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरण के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवानियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है।
1: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
2: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 स्थल सीमा चौकियां और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी तथा अगरतला के स्थल सीमा चौकियां शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में स्वीकृति दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जैम पोर्टल उचित गुणवत्ता, उचित मूल्य और उचित समय पर सही उत्पाद की खरीद दर्शाता है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में जैम पोर्टल के 10वें स्थापना दिवस पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि जैम के आने से पहले सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे सुशासन की कमी थी। श्री गोयल ने कहा कि जैम पोर्टल के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक ऑर्डर से 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सामान और सेवा

0: नमस्कार, मैं आपकी दोस्त पापिया आ गई हूँ आप सभी के लिए 100.1 FM गोल पर लेकर।
1: बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।
0: तो दोस्तों, आज की सुबह आज की ये मुलाकात एक ऐसी शख्सियत के नाम है जिन्हें सिर्फ अभिनेत्री कह देना शायद उनके पूरे व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं होगा। वो अभिनेत्री है, नृत्यांगना है, मंच की कलाकार है, निर्माता निर्देशक रही, सर्वजीवन जीवन में सक्रिय रही और सबसे बढ़कर वो भारतीय सिनेमा की उन चुनिंदा महिलाओं में से है जिन्होंने कई दशकों तक अपनी चमक बनाए रखी। एक ऐसी महिला जिनके नाम के साथ एक शब्द अपने आप जुड़ गया है, ड्रीम गर्ल। लेकिन जरा ठहरिए, ड्रीम गर्ल बढ़ने से पहले वो कौन थी? क्या वो हमेशा इतनी आत्मविश्वासी थी? क्या कैमरे के सामने आते ही उन्हें सफलता मिल गई थी? और क्या सिर्फ खूबसूरत चेहरा उन्हें उस मुकाम तक ले गया जहां आज भी उनका नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में बेहद सम्मान से लिया जाता है? जी बिल्कुल नहीं। उस कहानी में मेहनत है, अनुशासन है, असफलता है, इंतजार है और सबसे बढ़कर एक ऐसी लड़की का सपना जिसे नृत्य से बेहद प्यार था।

0: दोस्तों, हेमा मालिनी का जन्म अक्टूबर महीने में तमिलनाडु के अम्मनकोडी में हुआ। उनका परिवार दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक परिवेश से जुड़ा था और उनकी माँ जया चक्रवर्ती स्वयं कला और सिनेमा की गहरी समझ रखने वाली महिला थी। यही वो वातावरण था जिसे हेमा के भीतर कला के प्रति प्रेम पैदा किया। लेकिन जिस चीज ने उन्हें व्यक्तित्व की बुनियाद रखी वो था शास्त्रीय नृत्य। भरतनाट्यम उनके लिए केवल मंच पर प्रस्तुत करने की कला नहीं थी, वो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। बचपन से ही उन्होंने नृत्य का प्रशिक्षण लिया और धीरे धीरे मंच पर अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। उनकी चाल में जो गरिमा बाद में फिल्मों में दिखाई दी, उनकी आंखों में जो भाव दिखाई देते थे, उनकी मुद्रा में जो आत्मविश्वास था, उसके पीछे वर्षों की नृत्य साधना थी। और शायद यही वजह है कि जब हम हेमा मालिनी को पर्दे पर देखते हैं तो सिर्फ उनका चेहरा याद नहीं रहता, उनकी जो भाषा है, आंखों की भाषा, उनकी चाल, चलना, मुड़ना, मुस्कुराना, संवाद बोलते समय हाथों का इस्तेमाल करना, सब कुछ जैसे किसी प्रशिक्षित नृत्यांगना की तरह नियंत्रित और खूबसूरत दिखाई देता था। लेकिन फिल्मों की दुनिया ने उन्हें तुरंत स्वीकार नहीं किया। आज सुनना आज की पीढ़ी के लिए थोड़ा अजीब लग सकता है कि जिस अभिनेत्री को बाद में ड्रीम गर्ल कहा गया, उसे शुरुआती दौर में अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। लेकिन यही सिनेमा की दुनिया की सच्चाई है। खूबसूरती हमेशा पर्याप्त नहीं होती और प्रतिभा का रास्ता भी हमेशा सीधा नहीं होता। हेमा मालिनी ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो उनके सामने पहले से स्थापित अभिनेत्रियों की एक लंबी कतार थी। उस समय हिंदी सिनेमा में नूतन, वहीदा रहमान, शर्मिला टैगोर, साधना और कई दूसरी प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों ने अपनी जगह बना ली थी। ऐसे दौर में एक नई लड़की के लिए अपनी पहचान बनाना आसान बिल्कुल नहीं था। लेकिन हेमा के पास एक ऐसी चीज थी जिसे किसी प्रतियोगिता में नापा नहीं जा सकता, उनकी उपस्थिति। कैमरा उनके चेहरे पर आता, एक अलग ही आभा दिखाई देती। उनके चेहरे में भारतीय शास्त्रीय सौंदर्य था लेकिन साथ ही एक आधुनिक आकर्षण भी। ये संयोजन आगे चलकर उनकी पहचान बनने लगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, सुन लेते हैं अगला गीत। और मेरा सवाल आपके लिए ये होगा कि आपके लिए आपका ड्रीम गर्ल या ड्रीम गर्ल कौन है? जी हाँ, हेमा मालिनी को हम बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल कहते ही हैं, लेकिन आपके लिए आपका ड्रीम गर्ल कौन, आपके लिए आपकी ड्रीम गर्ल कौन है? फिलहाल ये गाना सुनते हैं और सुनते सुनते सोचिए और वो लाइन्स खुली हुई जवाब भी दीजिए।
1: ओहो, अरे कोई सांस तो छेड़ो, झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू।
2: नहीं नहीं नहीं भाभी, ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ।

0: बोलो बोलो चुप क्यों हो?
1: I like you.
0: हाँ, अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े।
1: ठहरो, अरे तू भी चुप हो जा। खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
0: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
2: ऐसा क्या?
0: हाँ।

दोस्तों, हेमा मालिनी को उनकी शुरुआती फिल्मों में बड़ी सफलता तुरंत नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे अवसर आने लगे और फिर वो समय आया जब उनकी मुलाकात ऐसे कलाकारों और निर्देशकों से हुई जिन्होंने उनके करियर की दिशा बदल दी। 1969 की फिल्म सपनों के सौदागर में उन्हें राज कपूर के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म में उन्हें वो लोकप्रियता तो नहीं दी जिसकी उम्मीद की गई थी, लेकिन एक नई अभिनेत्री के रूप में उनकी चर्चा जरूर शुरू हो गई। दर्शकों ने इस नए चेहरे को नोटिस किया और फिर आया वो दौर जब हेमा मालिनी सिर्फ फिल्मों में दिखाई नहीं देती थी बल्कि फिल्मों का आकर्षण बनती जा रही थी। उनकी खूबसूरती की चर्चा होती थी, लेकिन उनकी असली ताकत थी वो सिर्फ सजावटी अभिनेत्री बनकर नहीं रहना चाहती थी, उन्हें अभिनय में विविधता चाहिए। वो नृत्य करना चाहती थी, अलग अलग तरह के किरदार करना चाहती थी और यही महत्वाकांक्षा उन्हें धीरे धीरे बाकी अभिनेत्रियों से अलग करने लगी। 1970 के दशक में हिंदी सिनेमा अपने आप में एक दिलचस्प दुनिया था। एक तरफ रोमांस और पारिवारिक फिल्में थी, दूसरी तरफ सामाजिक बदलाव की कहानियां थी। नायक की छवि भी बदल रही थी। पर्दे पर गुस्सा था, संघर्ष था, बेरोजगारी थी और एक ऐसा युवा था जो व्यवस्था से सवाल कर रहा था। इस दौर में हेमा मालिनी की जोड़ी कई बड़े अभिनेताओं के साथ बनी, लेकिन जिस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा के दर्शकों के दिल में अलग जगह बनाई वो नाम है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का। पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री बेहद सहज लगती। धर्मेंद्र की मर्दानी देसी और भावुक छवि के सामने हेमा मालिनी की शालीनता और आत्मविश्वास का मेल दर्शकों को खूब पसंद आया। दोनों ने साथ में कई सफल फिल्में की और धीरे धीरे उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी लोगों को पसंदीदा जोड़ियों में शामिल हो गई। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रही, उनकी कहानी आगे भी बढ़ी।

तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के निजी रिश्ते की चर्चा भी उस दौर में शुरू हुई और ये रिश्ता आगे चलकर विवाह तक भी पहुंचा। लेकिन उनकी जिंदगी को सिर्फ इस रिश्ते के आधार पर देखना उनके व्यक्तित्व को छोटा कर देना होगा, क्योंकि जिस समय वो फिल्मी दुनिया में आगे बढ़ रही थी उस समय एक महिला के लिए अपने करियर में अपने शर्तों पर बनाए रखना आज की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। उनकी फिल्मों की सूची पर नजर डाली तो पता चलेगा कि उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाए। रोमांटिक भूमिकाएं, गंभीर भूमिकाएं, नृत्य प्रधान भूमिकाएं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के किरदार, कॉमेडी और एक्शन, उन्होंने कई सारे रंग आजमाए। और फिर आया वो किरदार जिसने हमेशा के लिए हिंदी सिनेमा को स्मृति का दर्जा दिया, वो है बसंती। जी हाँ, शोले की बसंती। सिर्फ एक किरदार नहीं थे वो उस दौर की लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन गई। तेज तरार बोलने वाली, घोड़ी पर दौड़ने वाली, बेबाक और चुलबुली बसंती ने यह भी दिखा दिया कि एक महिला किरदार सिर्फ पर्दे पर नायक के आसपास घूमने के लिए नहीं होता, उसमें अपनी आवाज हो सकती है, अपना व्यक्तित्व हो सकता है और अपनी कहानी हो सकती है। हेमा मालिनी ने बसंती को जिस अंदाज में निभाया वो आज भी याद किया जाता है। उनकी संवाद अदायगी, चेहरे के भाव और कॉमिक टाइमिंग ने किरदार को अमर बना दिया। और मजेदार बात यह है कि हेमा मालिनी के व्यक्तित्व की वास्तविक छवि और बसंती का अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। वास्तविक जीवन में वो बेहद अनुशासित, शास्त्रीय नृत्य में प्रशिक्षित और गरिमापूर्ण व्यक्तित्व वाली महिला थी, लेकिन कैमरे के सामने उन्होंने एक ऐसी लड़की को जीवंत कर दिया जो लगातार बोलती रहती, अपनी बात मनवानी जानती, और यही है अभिनय। एक कलाकार की खूबी ये नहीं कि वो खुद जैसा ही हर किरदार निभाए, असली खूबी ये है कि वो अपने बिल्कुल विपरीत किरदार को भी इतने विश्वसनीय बना दे कि दर्शक अभिनेता को भूलकर चरित्र को याद रखे। और ऐसा हेमा मालिनी ने कई बार किया।

और फिर धीरे धीरे उनके नाम के साथ वो उपाधि जुड़ गई जिसने उन्हें अलग ही दर्जा दे दिया, ड्रीम गर्ल। 1977 में आई फिल्म ड्रीम गर्ल ने इस नाम को और लोकप्रिय बना दिया, लेकिन असल में यह शब्द सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं था, यह हेमा मालिनी की स्क्रीन पहचान बन गया। सोचिए, किसी अभिनेत्री के लिए इससे बड़ा लोकप्रिय संबोधन क्या हो सकता है कि लोग उसका असली नाम लेते हुए भी उसके साथ ड्रीम गर्ल जोड़ दें। लेकिन इस चमकदार उपाधि के पीछे एक बेहद मेहनती महिला थी जो सुबह नृत्य का अभ्यास करती थी, शूटिंग करती थी, संवाद याद रखती थी, अलग अलग भाषाओं और फिल्मों के वातावरण में काम करती और फिर मंच पर शास्त्रीय नृत्य भी प्रस्तुत करती। यानी कैमरे के सामने जो सहजता दिखाई देती थी उसके पीछे बहुत अनुशासन था और यही बात हेमा मालिनी को समझने की कुंजी है। उनकी खूबसूरती ने उन्हें पहचान दिलाई होगी लेकिन उनकी मेहनत ने उन्हें टिकाया। उनकी लोकप्रियता ने उन्हें स्टार बनाया होगा लेकिन उनकी कला ने उन्हें लंबे समय तक प्रासंगिक बनाए रखा और उनका नृत्य आज भी उनके व्यक्तित्व की सबसे खूबसूरत पहचान में से एक है। जब वो मंच पर भरतनाट्यम प्रस्तुत करती है तो फिल्मों वाली हेमा मालिनी अचानक पीछे छूट जाती है और सामने आती है एक साधिका जिसने वर्षों तक शरीर भाव और लय पर काम किया। उनकी नृत्य यात्रा एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनकी बेटियां ईशा और अहाना देओल को भी उनके साथ जोड़ा। उन्होंने अपने परिवार में शास्त्रीय कला की परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश की और मंचीय प्रस्तुतियों के माध्यम से नृत्य को लगातार अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखा। शायद इसलिए हेमा मालिनी को सिर्फ फिल्म स्टार कहना उनके साथ अन्याय है, वो एक कलाकार है और कलाकार की सबसे बड़ी पहचान उसका लगातार सीखते रहना है। लेकिन कहानी अभी भी दिलचस्प होने वाली है, पर उससे पहले सुन लेंगे अगला गाना।

0: बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।
1: तो लो आगे उनकी याद में इस छोटे से प्यारे से गाने के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बात हो रही थी आज हेमा मालिनी के बारे में। दोस्तों, एक ऐसा दौर भी जब आया जब फिल्म उद्योग में महिला कलाकारों को लेकर कई तरह की सीमाएं थी। एक ऐसा दौर जब अभिनेत्री की उम्र को लेकर सवाल जल्दी उठने लगते। एक ऐसा दौर जब शादी और मातृत्व के बाद महिला के करियर को लेकर समाज तुरंत फैसला सुना देता था। हेमा मालिनी ने उन धारणाओं को भी अपने तरीके से चुनौती दी। उन्होंने शादी की, परिवार बनाया, लेकिन कला को छोड़ा नहीं, नृत्य को छोड़ा नहीं, सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहना छोड़ा नहीं। और यही शायद उनके व्यक्तित्व का सबसे सुंदर पक्ष है। उन्होंने अपनी जिंदगी को किसी एक पहचान में बंद नहीं होने दिया। वो सिर्फ किसी की पत्नी नहीं बनी, सिर्फ किसी की माँ नहीं बनी, सिर्फ अभिनेत्री नहीं रही। उन्होंने हर भूमिका को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाया और अपनी पहचान को अलग बनाए रखा। और दोस्तों, यही से हमारे आज की कहानी की एक खूबसूरत मोड़ लेती है, क्योंकि हेमा मालिनी को समझना हो तो उनकी फिल्मों से आगे जाना पड़ेगा। उनकी सफलता के पीछे उस समय का सिनेमा भी है, उनके साथ काम करने वाले कलाकार भी हैं, उनका नृत्य भी है, और वो महिला भी जिसने हर दौर में खुद को नए रूप में प्रस्तुत किया। चलिए बात करते हैं उस जोड़ी की जिसने पर्दे पर प्रेम को एक अलग रंग दिया। उन फिल्मों की जिन्होंने हेमा मालिनी को सुपरस्टार बनाया, उनके नृत्य और संगीत के उस रिश्ते की जिसने उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग रखा, और उस सफर की जहां ड्रीम गर्ल सिर्फ एक फिल्मी नाम नहीं रही बल्कि भारतीय सिनेमा की एक स्थायी पहचान बन गई। चलिए सुन लेते हैं, उस बारे में बात तो करेंगे ही, पर सुन लेते हैं अगला गाना भी।

0: वाली उम्र है।
1: छोड़ो बहाना
0: ना ना ना।
2: दोस्तों, हेमा मालिनी की फिल्मों की लोकप्रियता में संगीत की भूमिका भी बहुत बड़ी रही। 70 और 80 के दशक में हिंदी फिल्मी संगीत के बेहद समृद्ध समय था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, कल्याण जी, आनंद जी, बप्पी लहरी और कई दूसरे संगीतकार लगातार ऐसी धुनें दे रहे थे जो फिल्मों से बाहर निकलकर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती थी, और हेमा मालिनी पर फिल्माए गए गीत तो उनकी स्क्रीन छवि को और मजबूत किया करते। उनकी खूबसूरती, नृत्य और गीतों का मेला ऐसा था कि कई बार लोग सिर्फ फिल्म का गीत देखने के लिए भी सिनेमाघर जाने को तैयार हो जाते। उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी संगीत को दृश्यात्मक बना देती थी। यही वजह है कि जब हम उनके दौर के गीत सुनते तो सिर्फ आवाज़ नहीं सुनाई देती, हेमा मालिनी का चेहरा भी अपने आप याद आ जाता। किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले और

दूसरे महान गायकों की आवाज और हेमा मालिनी का चेहरा, हिंदी सिनेमा के संगीत इतिहास की ये जोड़ी आज भी बेहद खूबसूरत लगती है। और यही तो फिल्मी गीतों का जादू है। आवाज किसी और की होती है, चेहरा किसी और का, लेकिन दर्शक दोनों को एक ही भाव में जोड़ देता। हेमा मालिनी की स्क्रीन छवि भी इसी तरह संगीत के साथ मजबूत हुई। लेकिन उनके जीवन की कहानी का एक और पहलू है जिस पर बात करना जरूरी है, धर्मेंद्र के साथ उनका रिश्ता। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। पर्दे पर उनकी जोड़ी पहले से ही लोकप्रिय थी और धीरे धीरे ये रिश्ता वास्तविक जीवन में भी गहरा होता गया। दोनों के बीच प्रेम की खबरें मीडिया में आने लगी, लेकिन ये कोई आसान प्रेम कहानी नहीं थी। इसके साथ सामाजिक और पारिवारिक जटिलताएं भी थी। हेमा मालिनी अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण निर्णय को अपनी तरह से संभाला। उन्होंने अपने करियर को जारी रखा, निजी जीवन की परिस्थितियों के बावजूद सार्वजनिक जीवन में अपनी गरिमा बनाए रखी और 1980 में उनका विवाह हुआ धर्मेंद्र से। चलिए फिलहाल सुन लेते हैं आगे अगला गीत।

तो दोस्तों, हेमा मालिनी भी एक ऐसी याद है, एक ऐसी याद जिसमें सिनेमा, संगीत है, नृत्य है, प्रेम है, संघर्ष है, सफलता और एक महिला की अपनी पहचान बनाने की कहानी भी है। और शायद यही वजह है कि इतने वर्षों बाद भी जब उनके चेहरे पर कैमरा ठहरता है तो एक पुराना

वो दिन आज भी अपने आप याद आ जाता है, ड्रीम गर्ल। लेकिन आज की हमारी कहानी के बाद शायद इस नाम को थोड़ा अलग ढंग से समझेंगे। ड्रीम गर्ल सिर्फ वो नहीं थी जिसे पर्दे पर देखकर दर्शक सपने देखते, ड्रीम गर्ल वो भी थी जिसने खुद के अपने सपने देखे, उन्हें साधा, उनके लिए मेहनत की और फिर एक एक करके उन्हें अपनी जिंदगी में सच किया। और इसी के साथ आज लो आ गई उनकी याद से मैं, इस खूबसूरत से मुलाकात के बाद इजाज़त लेती हूँ आपसे। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही आवाज़, चेहरे या कहानी के साथ जो हमारे बीते हुए कल को आज की याद बना देती। तब तक के पुराने गीतों को संभाल के रखिए, क्योंकि कुछ गीत सिर्फ सुनाई नहीं देते, वो हमें हमारी ही पुरानी कहानी वापस सुना जाते हैं। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और यूं ही बने रहे 100.1 FM गोल्ड के साथ। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
0: श्री बिरला ने संसद में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सदन में लगातार इस तरह की स्थिति से वे व्यक्तिगत रूप से आहत हैं। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस समय सदन की कार्यवाही जारी है। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरण के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवानियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड विधानसभा के पास कल हुई झड़प में कई प्रदर्शनकारी और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
2: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: महाराष्ट्र के सतारा जिले

0: আত্মবলিদান দিবস। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই উপলক্ষে কেশপুরে ক্ষুদিরাম বসুর পৈতৃক বাসভূমিতে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। খবর এখনকার মতো এ পর্যন্তই। এরপরের খবর শুনুন 1:30।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
2: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
1: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। केवल बीजेडी के डॉ. संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक के बाद ये मार्च निकाला गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
3: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है, माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
1: नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में कल रांची में छात्रों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्री महतो झारखंड विधानसभा के पास पुलिस लाठीचार्ज के दौरान घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की ज्यादती और लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एसआईआर से संबंधित अपीलों के शीघ्र निपटारे की याचिका पर संज्ञान लिया। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा जो स्वामित्व और किराए सहित आवास के विकल्प प्रदान करे। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की कमी आई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 413 अंक गिरकर 78,130 पर और निफ्टी 133 अंक गिरकर 24,451 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

কানে কথায় গোল্ডেন সময়, আপনি শুনছেন 100.1 FM গোল্ড, 100.1 FM গোল্ড।

0: विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार, सदन चलना चाहिए।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
2: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
0: केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
3: जो दमनकारी नीति, जो बर्बरता झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, दिन में लाठी चलाई, रात में बेटियों को पीटा गया, कितना कोई असंवेदनशील हो सकता है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको, झारखंड पुलिस को, बधाई दे रहे हैं जिला प्रशासन रांची को कि आपने बहुत शांतिपूर्वक बहुत धैर्य से काम लिया।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं।
4: सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृह मंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं।
0: उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
5: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इधर झामुमो नेता मनोज पांडे ने छात्रों पर लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के

0: दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसके गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य GI उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मानसून की बदलती स्थिति और अनलीनों के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में

0: सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
1: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लों ने कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगा रही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को याद कर रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम के 150 वर्ष कैंपेन के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
2: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़्या में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज बाधित हुई। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल जारी है। राज्यसभा में आज न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। सभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।

साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को सुचारू बनाना भी है। इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो भी हो उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर यह बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जांच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है, वहीं छात्रों पर लाठी चार्ज के विरोध में आज भाजपा का झारखंड बंद अभियान भी जारी है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पुरहाट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। 10 लाख रुपए के इनामी माओवादी सलूका कायम समेत 4 माओवादियों ने चाईबासा पुलिस केंद्र में सिंहभूम संभाग के उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा के समक्ष आत्मसमर्पण किया। उन्होंने बताया कि अब जिले में कोई नक्सली नहीं बचा है। यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़िया में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रेतोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमले की खबर है। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस की सेनाओं ने कीव और ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन के आयुध भंडारों और परिवहन सुविधाओं पर हमला किया है। रूस ने अपने क्षेत्र में यूक्रेन के 300 से अधिक ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को 6-2, 6-1 से मात दी। 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। एलिना ने एकारितेनिया अलेक्जेंड्रोवा को हराया था। और मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश और बिजली चमकने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं आंध्र प्रदेश, झारखंड और बिहार में भी बृहस्पतिवार तक बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पार्वती मत बाटहु भंग गवारन मां, लड़िका जपिए सुसके फुसके बूढ़े बुढ़वा झक मारन मां, जो जान पिए अलमस्त रहे गजराज के दंत उखारन मां, बिसराए राधिका कान मगन, बिसराए राधिका कान मगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक के तहत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पर बोलते हुए कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि यह अनुरोध इसलिए किया गया क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है, जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यह विधेयक पेश किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों विधेयक बिना चर्चा के पारित हो गए। कार्यवाही पूरी होने के बाद लोकसभा को आज दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को सुचारू बनाना भी है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमनुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं केश कुमार बल।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की SIR से संबंधित अपीलों के शीघ्र निपटारे की याचिका पर संज्ञान लिया। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। झारखंड में JPSC JSSC परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात पर असर पड़ा। राजधानी में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पुराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। 10 लाख रुपए के इनामी माओवादी सलुका कायम समेत 4 माओवादियों ने चाईबासा पुलिस केंद्र में सिंहभूम संभाग के उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा के समक्ष आत्मसमर्पण किया। श्री अनुरंजन ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने समर्पण किया है। यूक्रेन में रूस के हमले में 9 लोगों की मौत हुई है और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़िया में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए हैं। पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्राइडनर को 6-2, 6-1 से हराया। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. The Lok Sabha today passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. Speaking on the bill, Minister of State for Home Nityanand Rai said the Kerala Legislative Assembly had passed a resolution in 2024 requesting the centre to change the name of the state from Kerala to Keralam. He said the request in this regard was made because the name of the state in Malayalam is Keralam, while in the constitution it is written as Kerala. The lower house also passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. Both the bills were passed without discussion amid uproar by opposition over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET matter. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. Meanwhile, Rajya Sabha has taken up the Tribunals Reforms Bill 2026 for consideration and passing. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और उसकी स्थिति पर कोई भी बदलाव संभव नहीं है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कोई भी तथ्यों को नहीं बदल सकता कि अरुणाचल भारत का हिस्सा है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
0: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ता जारी है और इसकी प्रगति संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारना भारत की प्राथमिकता है। श्रीलंका और भूटान के साथ रिश्ते और बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को ब्रिक्स आउटरीच सत्र का निमंत्रण दिया गया है। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी और लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 2015 में अधिकरणों के युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू की।

0: थी। उन्होंने कहा कि आधुनिक स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए विधेयक लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायालय की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिया है। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। 10 लाख रुपए के इनामी माओवादी सलूका कायम समेत 4 माओवादियों ने चाईबासा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। श्री अनुरंजन ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची सहित कई इलाकों में प्रभावी रहा। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश का और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Lok Sabha today passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. Speaking on the bill, Minister of State for Home Nityanand Rai said, the Kerala Legislative Assembly had passed a resolution in 2024 requesting the centre to change the name of the state from Kerala to Keralam. He said the request in this regard was made because the name of the state in Malayalam is Keralam, while in the constitution it is written as Kerala. The lower house also passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act of 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. Both the bills were passed without discussion amid uproar by opposition over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET matter. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. Parliament has passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. When the House met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. The bill aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. The legislation also proposes to establish a National Tribunals Commission. After passing the bill, the House took up special mention in which various members raised the issues of public importance. The chair adjourned the House for the day after completing its business to meet again at 11 a.m. tomorrow. The NDA today held a march inside the parliament premises over alleged police action against students in Jharkhand. The MPs were also carrying placards, alleging that the opposition is avoiding discussion, despite the government's assurance that Home Minister Amit Shah is ready to respond to the student protest. The march took place after

0: जी हाँ, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे रिंकू। दोस्तों, इस महफिल में तशरीफे लाए हैं हम सभी खास मेहमानों का दिल से इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि शाम चाहे कितनी भी उदास हो, अगर हाथ में चाय का एक कप हो और बैकग्राउंड में कोई क्लासिक नगमा बज रहा हो तो जिंदगी हसीन लगने लगती है। आज की हमारी ये शाम भी कुछ ऐसे ही होने वाली है, जहां चाय की गर्माहट होगी और पुराने दौर का जादू हमारे बीच महकेगा। महफिल की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन साथ ही में कुछ गीत, कुछ ख्वाब और कुछ सब कुछ लुटा देने वाला संगीत जो हमारे साथ है। यहां गीतकार आशा भोसले की आवाज में ये गीत आपके लिए।
1: झुमका गिरा रे

0: জানো, আমি কাল আমার ভাইপোর বাড়িতে গিয়েছিলাম, দেখে অবাক হয়ে গেলাম যে ওরা সারা দিন এসি চালায়, রোজ ওয়াশিং মেশিন চালায়, বাড়িতে দুটো ফ্রিজ, তার সত্ত্বেও ওদের ইলেকট্রিক বিল কত আসে জানো? জিরো। আমি প্রশ্ন করতে ভাইপো বলল,
1: কাকা সবই উপরওয়ালার দয়া, মানে সোলার প্যানেলের।
0: আমি ভাবছি এবারে তো লাগাতেই হবে। পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা, যুক্ত হতে রেজিস্টার করুন pmsuryaghar.gov.in। হর ঘর সূর্য ঘর।
2: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 एफएम गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 एफएम गोल्ड पर, एफएम गोल्ड पर।
3: जी हाँ दोस्तों, 100.1 एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं आरजे रिंकू के साथ ये सुनहरी शाम की आवाज में, सुनहरी गायकों के साथ। दोस्तों, एक कप चाय दो दिलों को मिला देती है, ये हर थके हुए जहन को जगा देती है। चाय की चुस्की और क्लासिक शो का ये संगम पुरानी यादों के झरोखों को एक ही पल में सजा देती है। जी हाँ दोस्तों, बैकग्राउंड में हमारे जो क्लासिक नगमा बजते हैं उससे तो जिंदगी हसीन लगने ही लगती है और हमारी शाम भी कुछ ऐसे ही लगने लगती है जैसे चाय की गर्माहट और पुराने दौर का मेल हमेशा एक दूसरे से मेल खाता हुआ नजर आता रहता है। महफिल की शुरुआत जब हमने चाय के नाम से शुरू की है तो साथ में किशोर कुमार, आशा भोसले, लता मंगेशकर का नाम भी तो जोड़ रहे हैं। तो आइए सुनते हैं किशोरदा की आवाज में एक प्यारा सा गीत।

और दा का गाना हो, फिर तो महफिल में हर कोई अपनी पुरानी यादों में दीवाना हो ही जाता है। वैसे दोस्तों, ये जो शो है ये चाय और क्लासिक्स का शो है, क्योंकि किशोर दा के गानों को हम सुन रहे थे तो उनको हमको याद करना भी जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ना केवल अपनी आवाज से फिल्मी संगीत और भारतीय संगीत और सिनेमा के जगत में एक ऐसे हुनर को दिखाया है जो कि बहुत ही यादगार रहेगा। उन्होंने योडलिंग और हर मूड के बादशाह कहलाने का जो हक है उन्होंने ही पाया है। किशोरदा भारत में वेस्टर्न स्टाइल की योडलिंग जैसे गीतों को, आवाजों को, एक स्टाइल को उन्होंने भारतीय सिनेमा में एक रंग दिया, जहां उन्होंने रूप तेरा मस्ताना और खे के पान बनारस वाले जैसे ऊर्जावान गाने गाए, वहीं चिंगारी, कोई भड़के और आने वाला पल जाने वाला पल भी गहरे दर्द और संजीदगी से भरे गाने को गाकर उन्होंने अपने इस बात को, अपनी गायकी को अमर कर दिया। यहाँ दोस्तों किशोर कुमार की बात हो रही है, हम और भी उनकी बातें करेंगे और गीत गाएंगे, लेकिन लता मंगेशकर की आवाज में एक गीत होना चाहिए।

0: जी हाँ, स्वर कोकिला और सरस्वती का रूप लता मंगेशकर, यानी कि हमारी प्यारी लता दीदी। उन्हें भारत की कोकिला और स्वर कोकिला यूं ही नहीं कहा जाता। उन्होंने 7 दशकों से भी ज्यादा समय तक अपनी मखमली आवाज से पूरी दुनिया पर राज किया। लता दीदी के बारे में कुछ भी हम बातें करें इससे पहले कि हम बता दें कि ये गीत लता दीदी और किशोर कुमार दोनों के करियर का एक मील का पत्थर था। इस गाने की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि इस फिल्म में इस गाने के 2 अलग-अलग सोलो वर्जन हैं। एक वर्जन को किशोर कुमार जी ने अपनी आवाज दी है और दूसरे वर्जन को लता मंगेशकर जी ने। आर डी बर्मन यानी कि पंचम दा के संगीत से सजे इस गीत में जिंदगी के एहसास, कृतज्ञता और गहरे प्यार को दर्शाया गया है। दोस्तों, ये गीत क्लासिक्स दौर की बातें करते हैं तो एक ऐसी आवाज है जिसके बिना संगीत का हर पन्ना अधूरा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही गीतों के साथ जब मंच पर इस गीत की प्रस्तुति होती है तो आप चाय की चुस्की और क्लासिक्स के माहौल में इस तरह से बन जाते हैं कि मैं, आप और क्या ये शो चल रहा है ये भूल जाते हैं। तो आपको याद दिला दूं कि आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 101 खरे सोने पे, चाय और क्लासिक्स।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.1 एफएम गोल्ड पर, हाँ चाय और क्लासिक्स रिंको के साथ। अभी सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आपकी कसम फिल्म से ये गीत। वैसे दोस्तों, समय हो रहा है स्टूडियो की घड़ी में 5:40। आइए सुनते हैं परियोजना प्रस्तुति।
1: 100.1 एफएम गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति
0: जी हाँ दोस्तों, परियोजना प्रस्तुति में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। भारत सरकार की 100% वित्त पोषित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है ये, जिसे छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए 24 फरवरी 2019 को ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को वर्ष 2030 से 31 तक जारी रखने के लिए 3.15 लाख करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। परियोजना प्रस्तुति में हम आपको इसके बारे में और भी विस्तार से बता रहे हैं कि आर्थिक सहायता और भुगतान संरचना का क्या इसमें अभिप्राय है। वार्षिक सहायता पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 की वित्तीय मदद की जाती है। किस्त संरचना यह है कि ये राशि 2,000 की 3 समान किस्तों में हर 4 महीने के अंतराल पर ट्रांसफर होती है और भ्रष्टाचार और बिचौलियों को खत्म करने के लिए राशि सीधे आधार लिंक्ड बैंक खातों में DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। नवीनतम किस्त माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 20 जून 2026 को पश्चिम बंगाल के हुगली से 23वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जिसके तहत 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ से अधिक ट्रांसफर किए गए हैं। 4 महीने के चक्र के अनुसार इसकी अगली 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 में आना अनुमानित है। योजना की शुरुआत से अब तक 23 किस्तों के माध्यम से देश के किसानों को कुल 4.47 लाख करोड़ से अधिक की सीधी मदद दी जा चुकी है। इस योजना से देश की महिला किसानों को भी भारी लाभ मिला है। इन्हें अब तक 1.6 लाख करोड़ से अधिक की सहायता प्राप्त

0: प्राप्त हुई है। सभी भूमि धारक किसान परिवार जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि पंजीकृत है, उनके पात्रों को आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और भू अभिलेख के द्वारा मुख्य दस्तावेज देकर आप पात्रता इसमें मानदंड और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आप इसे भर सकते हैं। संस्थागत भूमि धारक, आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी और 10,000 से अधिक मासिक पेंशन वाले सेवानिवृत्त व्यक्ति इस योजना के दायरे से बाहर है। सरकार ने फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सभी पंजीकृत किसानों के लिए ई केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इसे पीएम किसान आधिकारिक पोर्टल या जन सेवा केंद्रों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। हालिया सत्यापन अभियानों के तहत अपात्र और संदिग्ध खातों जैसे एक ही परिवार में कई लाभ या 2019 के बाद संदिग्ध रूपों से हस्तांतरित भूमि को सूची से अस्थायी रूप से हटाया गया है ताकि केवल वास्तविक किसानों को ही लाभ मिल सके। इसके फायदे को दर्शाने वाली आकर्षक तालिका फ्लोर चार्ट विवरण आपको हम पोर्टल में किसान समृद्धि आधार पोर्टल में मिल जाएंगे।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
2: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम, आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।

जी हाँ दोस्तों, क्या बात है। किशोर कुमार, आशा भोसले और साथ में थे मुकेश। इन दोनों जोड़ियों ने तो, प्रस्तुति ने तो मानो वक्त के पहिए को पीछे से ही घुमा दिया हो, हमें उस सुनहरे दौर में पहुंचा दिया है जहां पर हम खड़े थे। सुइयां फिर से अपनी जगह पे क्लासिक के दौर को दोहरा रही थी और हम उसे बस आनंद लेकर सुन रहे थे। दोस्तों, रूह को छू जाए जो वो साज लाते हैं, गुजरे हुए लम्हों को ही हसीन आवाज लाते हैं। आइए, हम तो बैठकर चाय की चुस्कियों को संभाल कर रखें क्योंकि हम महफिले क्लासेस का अगला अंदाज लाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे ही बोलेंगे हम, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज चुके हैं 6:56, और हमारे इन गीतों के साथ कुछ खबरें भी प्रस्तुत है, लेकिन इस गीत के बाद आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत, और उसके बाद हम सुनेंगे कुछ न्यूज़।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुनेंगे कुछ न्यूज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए विधेयक लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
2: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
1: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित हर मुद्दे पर विस्तृत चर्चा का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह भी विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। श्री मोदी ने सभी नागरिकों से एकजुट होकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का भी आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
3: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची सहित कई इलाकों में प्रभावी रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 388 अंक गिरकर 78,154 पर बंद हुआ। निफ्टी 112 अंक की गिरावट के से 24,472 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Parliament has passed the Tribunals Reforms Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. When the Upper House met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. The bill aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. The legislation also proposes to establish a National Tribunals Commission. The Rajya Sabha was adjourned for the day after completing its business. Earlier in the day, the Upper House witnessed continuous uproar over various issues, including alleged police action during students' protests over the NEET matter. Lok Sabha has passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. The Lok Sabha has also passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act of 1962. Both the bills were passed without discussion amid uproar by opposition over several issues. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju accused the Congress and opposition parties of running away from a discussion on the students' protest, saying that the government is ready for a detailed discussion on the issue. Speaking to reporters at Parliament premises, Mr. Rijiju said Home Minister Amit Shah was also ready to respond to the issues raised by the opposition, but they are not allowing the House to function. Meanwhile, Congress MP Pawan Khera alleged that the Home Minister was avoiding making a statement on the matter. India Today reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Ranthir Jaiswal said, in matters relating to the border areas between India and China, the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance for New Delhi. The spokesperson said this was also reiterated at the recently held 36th meeting of the Working Mechanism for Consultation and

0: Independence Day celebrations, inspiring citizens from all walks of life to come together in a collective celebration of India's national pride and spirit of unity.
1: Ghar ghar tiranga, har ghar tiranga.
0: Sharing a video on a social media platform, Prime Minister Modi urged countrymen to celebrate Independence Day with pride and grandeur, taking a pledge to build a Viksit Bharat. He further urged all to hoist the tricolour at their homes under the Har Ghar Tiranga campaign. Global ratings agency Fitch Ratings has affirmed India's sovereign rating at BBB- with a stable outlook, citing robust growth prospects, improving macroeconomic stability and strong external finances. Meanwhile, the Sensex shed 388 points to close at 78,154. The Nifty lost 112 points to settle at 24,472. And in Canadian Open tennis, 19 seed Luciano Daddari of Italy will face 28 seed Brandon Nakashima of the US in the men's singles quarterfinals tonight. In the other quarterfinals, Spain's 20th seed Rafael Jordar will take on 18 seed Arthur Fields of France later tonight. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण. नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आप सभी का स्वागत. मैं हूं विशाल शर्मा. श्रोताओं, भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की गई है. स्टार्टअप पॉलिसी फोरम ने द सेमिकॉन कंसोर्टियम की शुरुआत की है. ये सेमीकंडक्टर क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप निवेशकों और वैश्विक कंपनियों को एक मंच पर लाने का प्रयास है. ये पहल ऐसे समय में हुई है जब सरकार ने हाल ही में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 जुलाई को 1,27,500 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए इस मिशन को मंजूरी दी. आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि सेमीकॉन 2.0 भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में क्या बदलाव ला सकता है, मैन्युफैक्चरिंग और वैश्विक निवेश पर इसका क्या असर होगा और सेमीकंडक्टर का बढ़ता क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक क्षमता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है. श्रोताओं, भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने वर्ष 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी. अब पहले चरण से मिली गति को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले चरण यानी सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी है. आइए अब समझते हैं कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की अब तक की यात्रा कैसी रही है और सेमीकॉन 2.0 इस यात्रा को किस तरह आगे बढ़ाएगा.
3: सेमीकॉन 2.0 के तहत पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है. पहला क्षेत्र है डिजाइन. देश में 100 से अधिक स्टार्टअप चिप डिजाइन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इन स्टार्टअप के जरिए रणनीतिक और व्यावसायिक उपयोग वाले उत्पादों के लिए जरूरी डिजाइन और तकनीक विकसित की जा रही है. दूसरा क्षेत्र है मशीन और सामग्री. सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जरूरी मशीनों, सामग्री, रसायनों और गैसों के निर्माण तथा इनके क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा. इससे सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए जरूरी आधार तैयार होगा और देश में प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा. तीसरा क्षेत्र है और अधिक फैब स्थापित करना. फैब यानी फैब्रिकेशन प्लांट वह विशेष संयंत्र है जहां सिलिकॉन वेफर पर बेहद छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तैयार किए जाते हैं और उनसे सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाती है. भारत में पहली फैब के 2028 में शुरू होने की उम्मीद है. चौथा क्षेत्र है ATMP और OSAT उद्योग को और मजबूत करना. भारत में ATMP यानी सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और टेस्टिंग से जुड़े संयंत्रों में हो रहे काम के बाद दुनिया भारत को ऐसे संयंत्रों के लिए एक वैकल्पिक स्थान के रूप में देख रही है. सेमीकॉन 2.0 के तहत इस क्षेत्र को और बढ़ावा दिया जाएगा और उन्नत ATMP तकनीकों को भारत लाने पर जोर रहेगा. पांचवा क्षेत्र है रिसर्च एंड डेवलपमेंट. छठा क्षेत्र है टैलेंट डेवलपमेंट. सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए कुशल लोगों की जरूरत को देखते हुए देश में 315 विश्वविद्यालयों में छात्रों को आधुनिक EDA टूल्स की मदद से चिप डिजाइन की ट्रेनिंग दी जा रही है.

0: तक करीब 68,000 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। श्रोताओं, अगर सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के पहले चरण की बात करें तो अब तक 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मंजूरी दी गई है। इनमें कुल 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल है। इन 12 स्वीकृत प्रस्तावों में से 3 कंपनियों ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है, जबकि एक और कंपनी के जल्दी ही उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है। डिजाइन के क्षेत्र में भी पहले चरण के तहत स्टार्टअप और MSME की 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दी गई है।
1: श्रोताओं, सेमिकॉन 1.0 के तहत भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक मजबूत आधार तैयार किया। अब सेमिकॉन 2.0 के साथ इस यात्रा को अगले चरण में ले जाने की तैयारी है। पहले चरण से दूसरे चरण तक भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में क्या बदलाव आया है, इसे समझने के लिए आकाशवाणी समाचार ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक चांडक से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: फेज 1 में हमारा क्रेडिबिलिटी बन गया है और फेज 2 में आउटकम जो होगा हमारा उससे हम कैपेबिलिटी बिल्डअप करेंगे और इस पॉलिसी में पूरा एंड टू एंड इकोसिस्टम बनेगा, जो फाउंड्री मैन्युफैक्चरिंग है, पैकेजिंग है जिसे ATM भी कहा जाता है, डिजाइन है, R&D भी किया जाएगा इसमें, और साथ में मशीनरी और मटेरियल्स कहेंगे हम, उसमें करीबन 200 से 250 प्रकार के केमिकल्स, गैसेस और मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है और इक्विपमेंट की, उसको भी फोकस किया जाएगा। उसके लिए भी 30% का गवर्नमेंट ने सब्सिडी तय किया है जिससे वो काम भी इंडिया में बना जाएगा। हमें अब सिर्फ चिप बनाने की बात है, लेकिन चिप बनाने के लिए और इसके डिजाइन के लिए जो भी कौशल विकास और सप्लाई चेन है उस पर ध्यान देना जरूरी है। इस इनिशिएटिव से देश में अधिक मूल्य संवर्धन होगा, इकोनॉमिक वैल्यू ऐड होगी, देश में आयात की निर्भरता भी बहुत कम होगी। मैं अगर नंबर की बात करूं यहां पर, हमारा 2030 में करीबन $100 बिलियन का सेमीकंडक्टर कंजम्पशन होगा।
1: श्रोताओं, सेमिकॉन 2.0 में पूरे इकोसिस्टम के विकास के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और वैश्विक निवेश पर भी विशेष जोर दिया गया है। भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में इन प्रयासों का क्या महत्व है, इस पर अशोक चांडक ने विस्तार से बात की।
2: अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है, इसके बिना ये होगा नहीं। हमारे पास प्रोसेस टेक्नोलॉजी नहीं है, नथिंग रॉन्ग, नहीं है तो नहीं है, लेकिन उसको ला सकते हैं। तो इसलिए भारत केवल जो आर्थिक प्रोत्साहन है, जिसे हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक बेनिफिट, ये दे रहा है, बल्कि उसके साथ साथ में भारत की जो स्टेबल पॉलिसीज और कुशल मानव संसाधन, टैलेंट, और जो हमारा घरेलू बाजार है, डोमेस्टिक मार्केट, ये काफी तेजी से विकसित हो रहा है। और इसीलिए ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का पूरा टोटल है, इसे हम बना रहे हैं, और ये जब बनेगा तभी भारत में अंतरराष्ट्रीय कंपनियां इंटरेस्ट बताएंगी और वो निवेश करेंगी। हमारे पहले चरण में जो सेमिकॉन फेज 1 में कुछ इंटरनेशनल कंपनियों ने ऑलरेडी कोलैबोरेशन किया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। और मैं और एक कहना चाहूंगा, एक हम इवेंट करते हैं सेमिकॉन इंडिया, जो कि अभी सितंबर में आ रहा है, इसमें हम काफी प्रमोशन करते हैं और विदेशी कंपनियां आती है। इस साल भी सेमिकॉन इंडिया में करीबन 300 विदेशी कंपनियां आएंगी।
1: श्रोताओं, सेमीकंडक्टर को अक्सर केवल मोबाइल फोन, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन आज सेमीकंडक्टर आधुनिक अर्थव्यवस्था के लगभग हर महत्वपूर्ण क्षेत्र का आधार बन चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर सेमीकंडक्टर उद्योग इतना महत्वपूर्ण क्यों है और हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं।
0: अनुमान है कि 2035 तक वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार $1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का हो सकता है। वहीं भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2035 तक करीब $200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन भारत के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। देश में सेमीकंडक्टर की मौजूदा खपत का करीब 90 से 95% हिस्सा आयात से पूरा होता है। इसका मतलब है कि घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसे पूरा करने की हमारी अपनी क्षमता अभी सीमित है। भारत की आयात निर्भरता का एक सीधा आर्थिक असर विदेशी मुद्रा पर भी पड़ता है। वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2025 के बीच भारत ने महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादों के आयात पर करीब $150 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए। इसी अवधि में सेमीकंडक्टर उत्पादों के आयात में सालाना औसतन 23% की दर से बढ़ोतरी हुई। अगर ये गति बनी रहती है तो 2035 तक सालाना आयात लागत 240 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है। इसलिए भारत के लिए घरेलू सेमीकंडक्टर क्षमता विकसित करना केवल आयात कम करने का सवाल नहीं है, ये देश के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने, विदेशी

0: मृदा बचाने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सप्लाई में होने वाले व्यवधान से बचाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। आज की आधुनिक रक्षा प्रणालियां भी सेमीकंडक्टर पर काफी हद तक निर्भर है। मिसाइल, ड्रोन, रडार, लड़ाकू विमान, नौसैनिक प्रणालियां और सुरक्षित संचार व्यवस्था, इन सभी में सेमीकंडक्टर आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: श्रोताओं, भारत ने अब सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपनी आगे की दिशा तय करना शुरू कर दिया है। 2035 तक भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को 120 से 150 बिलियन अमरीकी डॉलर का बनाना है और इसी अवधि में 35 से 50% तक चिप सेल्फ सफिशियंसी हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह देखें तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की कोशिश केवल अपनी जरूरत पूरी करने की नहीं है, लक्ष्य एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है जो घरेलू जरूरतों को पूरा करे, वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका बढ़ाए और सेमीकंडक्टर को आर्थिक विकास, तकनीकी क्षमता और रणनीतिक आत्मनिर्भरता का आधार बनाए। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड।

0: जी हाँ दोस्तों, परछाइयाँ रह जाती है, रह जाती कहानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, बस तेरी मेरी कहानी है। दोस्तों क्या बात है, पूरा माहौल थिरकने सा लगा। सच में पुराने दौर के गानों में जो बात थी वो आज कहाँ है। अब हम आ पहुंचे हैं शाम के आखिरी पड़ाव, क्योंकि अभी 6:27 हो चुके हैं। जैसे चाय की आखिरी चुस्की सबसे ज्यादा गाढ़ी और स्वादिष्ट होती है, वैसे ही हमारी ये आखिरी प्रस्तुति भी स्वादिष्ट होगी, क्योंकि दिल थाम लीजिए, शाम ढल रही है पर चाय का नशा अभी बाकी है। क्लासिक्स यादों का वो हसीन सिलसिला अभी बाकी है। जाते जाते जो दिलों पर अमिट छाप छोड़ जाए, इस महफिल का वो सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी है। आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में, और इसी गीत के साथ रिंकू को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: मैंने

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: थैंक यू निखिल एंड पुनीत, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। अ क्विक लुक एट द हेडलाइंस लिसनर्स। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फॉल नियरली 0.5%। सेंसेक्स ड्रॉप्स अराउंड 400 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स बिलो 24,500। Global ratings agency Fitch affirms India's sovereign rating at BBB with a stable outlook, says country's economy remains strong despite headwinds, and stocks to be replaced in NSE indices changes to take effect on 30th of September this year.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट। सेंसेक्स 400 अंकों के आसपास नीचे आया। निफ्टी 24,400 से नीचे पहुंचा। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB पर यथावत रखी। कहा यह भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कई सूचकांकों में स्टॉक बदलने की घोषणा की। बदलाव इस वर्ष 30 सितंबर से लागू होंगे।
0: Before we move into the program, we'd like to share with you listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मिड कैप इंडेक्स बिना किसी बड़े बदलाव के बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.2% का उछाल देखा गया। भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण मुख्य सूचकांक गिरावट के साथ खुले और पूरे सत्र के दौरान एक सीमित दायरे में ही कारोबार करते रहे।
0: Benchmark domestic equity indices ended around 0.5% lower today. The Sensex shed 388 points to close at 78,154. The Nifty lost 112 points to settle at 24,472. Meanwhile, in the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index ended on a flat note, while the Small-Cap 100 Index gained 0.2%. The benchmark indices opened on a negative note and remained range-bound throughout the

0: session following a rise in oil prices amid lingering geopolitical uncertainties.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 25 कंपनियों के शेयरों में सुस्ती देखी गई. सबसे अधिक खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में अल्ट्राटेक सीमेंट में 2.7% से ज्यादा, एक्सिस बैंक और इंडिगो में 1.5% और भारतीय एयरटेल में 1.4% से अधिक की गिरावट आई. वहीं दूसरी तरफ एटर्नल में 2%, इन्फोसिस में लगभग 0.5% और टाइटन में 0.3% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई.
0: In sectoral indices on the BSE, 21 out of 28 sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, hospitals dipped 1.8%, realty shed 1% and FMCG lost 0.9%. In contrast, focused IT climbed more than 0.4%. IT rose almost 0.4% and healthcare added over 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,279 companies declined, 2,033 advanced and 198 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रुपए पर बंद हुआ. पुनीत, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आज जो मार्केट में हमने गिरावट देखी, उसके पीछे कौन से मुख्य कारण रहे, ऐसी क्या वजह रही कि गिरावट देखने को मिली, और खासतौर पर ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि लगातार बदलाव हो रहे हैं, लेकिन पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह थोड़ी सी तेजी भी देखी गई थी.
2: निखिल, आज मजे की बात यह है कि हम, हालांकि आपने कहा कि बाजारों में गिरावट देखी और इनफैक्ट मार्केट ब्रेड्स भी कुछ नेगेटिव है, काफी कंपनीज में गिरावट थी, लेकिन अगर आप देखें तो जो लार्ज कैप है, जो ज्यादातर जो गिरावट बाजार में देखी गई वो लार्ज कैप स्टॉक्स में, यानी हेडलाइन जो नंबर्स होते, जब बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके जो शेयरों में, वहां हमने गिरावट देखी. और जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स थे, आपने बताया कि इंडेक्स में भी वहां पर गिरावट नहीं थी, स्मॉल कैप में तो थोड़ा हल्की बढ़त थी. तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, जो FIIs हैं या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बायर्स हैं, उनकी बहुत खरीदारी अभी बाजार में नहीं है, एग्रेसिव बाइंग नहीं है. FIIs का रुख बड़ा मिला जुला है. वो किसी दिन, अब आप देखेंगे कि पहले तो वो लगातार सेलिंग कर रहे थे कई महीनों तक, अब हम देख रहे हैं कि जो अगस्त का महीना गया है कि उसमें कुछ मिक्स्ड ट्रेंड है. जुलाई और अगस्त में कभी एक दिन वो खरीदारी करते हैं, एक दिन वो बिकवाली करते हैं. तो लार्ज कैप इंडेक्स जो शेयर्स हैं, जहाँ जो इंडेक्स में वेटेज है इनका ज़्यादा, वहाँ पर हमने आज सेलिंग देखी थी, इसलिए वहाँ पर गिरावट थी. लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आज भी काफ़ी स्टेबिलिटी थी, मैं ये तो नहीं कहूँगा तेज़ी थी, पर स्टेबल थे. तो बाज़ार को इस वक्त हम काफ़ी, मतलब आप कह सकते हैं मिला जुला रुख है बाज़ार के अंदर. सीधा हम ये नहीं कह सकते बाज़ार में कमज़ोरी है या बाज़ार में तेज़ी है, इसलिए ये मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वी नीड टू लुक एट इट डिफरेंटली.
1: तो इसमें मुनाफा वसूली भी एक कारण माना जा सकता है इसके लिए?
2: देखिए, मुनाफा वसूली बहुत ज़्यादा नहीं है इस वक्त, बल्कि जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स, जैसे IT क्षेत्र था, वहाँ पर थोड़ी सी हमने कमजोरी देखी थी, वहाँ रिबाउंड हुआ है, तो कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग हुई है. मैं ये कहूँगा कि चर्निंग हो रही है, जो ओवर वैल्यूड सेक्टर्स थे वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और अंडर वैल्यूड सेक्टर्स में, यानी IT जैसे क्षेत्र में और बैंकिंग में, वहाँ पर थोड़ी बाइंग हो रही है.
0: Puneet, so you would agree that, you know, and I remember this conversation earlier also with you before we moved into the studio, that means there's a broad-based movements are not, there are no broad-based trends, but stock-specific.
2: Absolutely.
0: So without mentioning stocks, just give us an idea about this, please.
2: So you're right. I mean, so what we are observing is that while there is no broad-based trend, no, we can't say that the market is moving up or moving down either way. There are pockets of strength within the market. So you will find that there are pockets of strength in a particular sector. For example, we have been seeing IT sector rebounding lately. You know, last couple of weeks, we've seen a big 15-20% move in IT sector stocks because they're really beaten down. So some money may have moved from other sectors which there were profits to be taken. So those that money may have moved to IT sector stocks. Similarly, within the mid-cap and small-cap space, we find stocks which have done very well actually. And a lot of retail investors, mutual funds, they are attracted to mid-cap and small-cap companies because the growth that we have seen in the numbers that we saw for the last quarter, that has been very good for small and mid-cap companies. So a lot of money has actually rotated out of large caps into mid-caps and small caps.
0: Right. So when we look at, you know, earlier when we spoke about IT shares and AI shares, I mean, let's go back 6 to 8 months, we always saw that, you know, IT shares were being beaten down and AI shares were really coming up and all. But we also know that while the movement has been in different directions, IT and AI are very closely interlinked because success of AI and success of IT are strongly interdependent. Your views on this?
2: So, Gaurav, what happened was very interesting. In fact, in India, and see, India largely has these IT services companies. We do not have pure play AI companies or large AI players in India. Of course, there is one AI which is the company that are doing the software business, the development part. There was another set of players in AI which was chip makers.
0: Right.
2: So we saw that the money went from IT services companies, they actually went into AI model developers, or it went into AI stocks, which is basically we saw Korea, Japan, Taiwan, countries like these which have very large chip makers listed there. They attract a lot of capital. So, and again, in the last two, three, so there was a huge run-up in these stocks, in these companies. And then last couple of weeks, we saw a very big churn away from these companies again and back to Indian IT that we saw. So clearly, these are not markets where there's a long-term trend. You see hot money moving into one sector quickly, then there's a profit booking, it moves to another sector. So that is the kind of market which is there right now.
0: Hot money, but be careful to touch it, right?
2: Absolutely. Yeah. So this is really meant for people who are more into no speculative set of rules of the game.
0: Right.
2: But for long-term investors, it's difficult.
1: Puneet, banking, aviation or cement, jaise jo sectors hain, tarah tarah ke changes hame dekhne ko mil rahe. Ek seedhi line kahin नजर नहीं आ रही है, उसमें अप्स एंड डाउन्स हमें नजर आ रहे हैं, उथल पुथल भी एक दो बार देखने को मिली है, लेकिन मैं आपका ध्यान हॉस्पिटल सेक्टर की ओर थोड़ा सा ले जाना चाहता हूं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
2: देखिए, आज हॉस्पिटल के शेयर्स, वैसे नॉर्मली हॉस्पिटल सेक्टर को हम डिफेंसिव सेक्टर मानते हैं, कारण यह है कि ऐसा लगता है कि ये बिजनेस जो है ये चलता रहेगा, इसमें कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होता। भारत जैसे देश में जहां बहुत सुविधाएं बढ़ रही हैं और ज्यादातर लोग अब इंश्योरेंस के जरिए हॉस्पिटल सेक्टर में आ रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर में, वहां पर एक ग्रोथ सेक्टर था, लेकिन आज खास तौर से हमने देखा कि हॉस्पिटल के शेयरों में गिरावट आई है, क्योंकि पार्लियामेंट का पैनल है कंसल्टेशन, उन्होंने ये कहा है कि हॉस्पिटल के जो रेट्स हैं उस पर कुछ लगाम रखनी जरूरी है, कुछ सजेशंस हैं पार्लियामेंट पैनल के, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुए, सिर्फ सजेशंस हैं ये, लेकिन अगर सरकार इसको संज्ञान में लेती है, इसको कंसिडर करती है, तो हॉस्पिटल की जो अर्निंग्स हैं या बिल्स जो हैं उस पर एक लगाम लग सकती है, इसलिए वहाँ पर हमने शेयर्स में थोड़ी गिरावट देखी है, पर मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं है, एक निजी रिएक्शन है, बट डेफिनेटली आज थोड़ी कमजोरी थी।
0: आपने एक शब्द यूज किया लॉन्ग टर्म। We'd like to understand from you, you know, everything is changing, generations are changing, ideas are changing, ideologies are changing. Is long term, short term and medium term also changing?
2: So, yeah, Gaurav, you have raised a very pertinent question, I must say. And I asked this question to myself, no? Last 25, 30 years, people made a lot of money, they created a lot of wealth, investing in ideas of long term investing and consistent compounders, long term investing. Those are the buzzwords, they were the real mantras to make money in the markets. But last 4-5 years, we've seen that has changed a lot. And I don't know if that has to do with changing technology in the markets, which may be AI driven, which may be algorithm driven, computerized tradings. So I don't know. I can't really pass a judgment on this right now. Have the rules of the game changed? I don't know. But I can always say that, look, long term will be relevant in the markets. So people who cannot keep up with short-term trends, who do not want to be speculative, they want to have a peaceful night, I think long-term trend will remain in force. Of course, along with it, we'll see new developments like algorithm-based trading,
0: right,
2: and computerized trading.
0: And I think also somewhere to say, short-term shouldn't become very short-term and long-term can't become very long-term. Let's find moderation. There's volatility.
2: Usually,
0: here.
2: You know, if your population which is investing is very young, and they're used to technology a lot.
0: Right.
2: So maybe they prefer short term to the long term.
0: But you know, a lot of my investment is linked to the market, but I think a lot of investors are linked to the mind.
2: Absolutely.
0: So it's mind over market, mind.
2: And there's so much information now flowing into the markets all the time.
0: Very true. We move on to our next story. NSE Indices Limited has announced the replacement of stocks in various indices, including the Nifty 50, as a part of its semi-annual review. According to the exchange, BSE Limited will be included in the Nifty 50, replacing with Pro Limited. The changes will take effect on September 30th, 2026. NSE Indices has also announced changes across several other broad market sectoral and thematic indices as a part of the periodic review. Help us understand, Puneet, that when these reviews happen, it can't suddenly be only on the price of shares. So it has to be deep understood, because because it has to hold for some time. Finally, it's going to the Nifty 50 and then, of course, into Nifty 100. So how does this work? You know, just a little insight into this.
2: So, Gaurav, every year, twice a

0: You're in fact the exchange or the service provider which creates indices. They create these, they assign certain weightages to stocks in the indices. Nifty 50 has 50 stocks, but not all of them are equally weighted in the index.
1: Okay.
0: The stocks are given weights according to the free float market capitalization. So as the prices change during the year, you will find that the free float market cap of the stock also changes. So there was a time when, let's say, HDFC Bank had the highest weightage in the index, but if the price fell, the market cap also fell, and therefore the weight in the index goes down.
1: But it could still be in the index.
0: It would still be in the index. Okay. So if you look at Nifty 50, the NSE has said that there was Wipro in the index. Now Wipro will be taken out on 30th of September, and we will see BSE, which is a listed share, that will be added to the index. Now what is the significance of this? The significance is that there are, in fact, lakhs of crores of rupees which are riding on the Nifty index itself. A lot of investors have put money in the Nifty, either Nifty ETF, Nifty 50 ETF, or Nifty mutual funds. Now, that money will have to be realigned or reallocated in line with the new weightages, and in case of replacement, for example, the mutual funds were holding Wipro in their portfolio as part of Nifty. Now, they will have to sell Wipro, and they will have to buy the BSE share.
1: Right.
0: So it does make a huge difference to where the money flows whenever the indices are rebalanced, or their stocks are included or they're excluded. So it is a very big thing. Our estimate is that roughly 5 to 6 lakh crore rupees is invested in Nifty 50 itself through the mutual fund route and through the ETF route. Now that money gets churned as a result of this rebalance. So it's a very significant exercise, but it happens twice a year. So every 6 months it is done, and largely we don't see very big changes in the index in Nifty 50. It's rare that we see a stock being excluded and another being included, which
1: is
0: happening.
1: The
0: weightage is changed mostly, but this time of course we're going to see. So whichever stock is excluded sees a lot of selling pressure, and whichever stock is included will see a lot of buying push in that stock.
1: Right. So quickly, your comment on the MSCI rejig is due tomorrow.
0: That's right. So MSCI again is so what we are doing with the domestic indices in terms of mutual funds, the Morgan Stanley, so this is called Morgan Stanley Composite Index. So worldwide, Morgan Stanley is considered to be the most credible, most reliable source for allocating or creating these indices. And a lot of international funds, they allocate their funds in line with the MSCI index. For example, if MSCI increases India weightage in the index, we will see money coming into India from FIIs. FIIs will be literally forced to buy into India because they benchmark their mutual funds to MSCI. So it's the same thing. This is part of the passive investing trend that we see worldwide.
1: Right.
2: वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा कि यह भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने भारत के लिए स्थिर दृष्टिकोण भी बनाए रखा है और कहा है कि पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न ऊर्जा संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में बनी हुई है। फिच रेटिंग्स ने कहा कि देश में व्यापक आर्थिक स्थिरता संतुलित है और नीतिगत विश्वसनीयता में सुधार जारी है, जो आगे भी प्रगति का आधार बनेगा। एजेंसी ने अनुमान व्यक्त किया है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। फिच ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था विभिन्न वैश्विक घटनाक्रमों के प्रति लचीली रही है, लेकिन अमेरिका ईरान संघर्ष से जुड़ी अनिश्चितता के कारण कुछ जोखिम बने हुए हैं, क्योंकि भारत ऊर्जा का एक बड़ा आयातक है। फिच ने यह भी कहा कि ऊर्जा संकट के कारण महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि भारत में महंगाई रिजर्व बैंक के अनुमानित 2-6% की सीमा के भीतर रहेगी। पुनीत, मेरे दो प्रश्न हैं इस खबर को लेकर के। पहला तो ये कि एक ऐसा स्टेटमेंट आना कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था बेहतर बनी हुई है, इसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और जो पॉलिसीज हैं उन पर क्या इम्पैक्ट है। दूसरा सवाल ये कि फिच ने जब ये बोला है कि अगले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी, कहीं ना कहीं ये मार्केट को स्टेबिलिटी देने का प्रयास करने की बात जैसा है, और दूसरा ये भी कि इकोनॉमिक वैल्यू को अगर हम समझें तो इसके क्या इंपैक्ट होंगे?
0: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि फिच की जो सॉवरेन रेटिंग होती है, जो फिच ने जो इंडिया की सॉवरेन रेटिंग ट्रिपल बी रखी है, ये एक और स्टेबल है, क्योंकि पहले भी ट्रिपल बी थी। हम ऑफकोर्स हम चाहते हैं कि अब ट्रिपल बी से अगला जो कदम है वो ए रेटिंग जो होती है, अगर वो आती है तो इसका देखिए असर पड़ता है भारत की, किस रेट पर हम पैसा भारत रेज कर सकते हैं।

0: ये क्रेडिट रेटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ देश के लिए, क्योंकि भारत तो ऐसा कोई फॉरन बोरोइंग नहीं करता है, लेकिन जो हमारे देश की कंपनियां हैं इस रेटिंग के बेसिस पे उनको क्रेडिट रेटिंग मिलती है और उससे आगे वो पैसा रेज कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा असर पड़ता है इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर भारतीय कंपनियों के लिए। दूसरा यह है कि जो भारत में अभी कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होती है, जो विदेशी निवेशक हैं वो पैसा डालते हैं, तो इस रेटिंग से उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर फिच ये कहता है कि आने वाले समय में हमारी जो इकोनॉमिक डेटा आउटलुक है या ग्रोथ है वो स्टेबल है और अच्छा है, उसका एक पॉजिटिव असर जरूर पड़ता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में और इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है किसी भी देश के लिए क्रेडिट रेटिंग का बने रहना। तो मुझे लगता है अभी स्टेबिलिटी का संकेत कर रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इस पर बेहतर थोड़ी से बेहतर करेंगे। एंड इफ वी गो इनटू द इन्वेस्टमेंट, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, ट्रिपल बी इन्वेस्टमेंट ग्रेड, इससे अगर बेहतर होता है भारत को फायदा हो सकता है।
1: जून में देश में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 28,973 करोड़ रुपए का निवेश आया था, जो जुलाई में 14.8% घटकर 24,697 करोड़ रुपए रह गया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP में 31,961 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो जून के मुकाबले अधिक है। इक्विटी फंड श्रेणी के लिए जुलाई में स्मॉल कैप फंड्स में सबसे अधिक 7,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ। इसके बाद मिड कैप फंड्स, फ्लैक्सी कैप फंड्स और मल्टी कैप फंड्स ने कारोबार किया। हालांकि इस दौरान लार्ज कैप और इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम फंड्स से निकासी देखी गई। पिछले महीने गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश घटकर 1,559 करोड़ रुपए रह गया। वहीं डेट फंड्स में ट्रेंड उल्टा हो गया, पिछले महीने इनमें 1,87,511 करोड़ रुपए का निवेश देखा गया। डेट ओरिएंटेड स्कीमों में लिक्विडिटी फंड्स में सबसे अधिक 1,19,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। पुनीत, अभी जुलाई के महीने में जितना हमने इन्वेस्टमेंट देखा, जून के महीने में जितना देखा, जुलाई में घट करके वो काफी कम रह गए, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं?
0: देखिए, ये आप अगर देखें तो अभी हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि लार्ज कैप्स का जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो कम हुआ है पिछले दिनों, और इन्वेस्टर्स जो है रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादातर वो अब मिड कैप स्मॉल कैप्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो उस ये डेटा उसको पुष्ट करता है, उसको दिखाता है कि हमारा आंकलन जो है वो सही है। और देखिए, जो SIPs है, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, उसमें काफी उसमें से पैसा लार्ज कैप में भी जाता है, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जरिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा एक दर्शाता है कि जो रिस्क एपिटाइट है इन्वेस्टर्स की, वो थोड़ी बढ़ रही है। और कुछ हद तक जो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की परफॉर्मेंस है, आउट परफॉर्मेंस है कंपेयर टू लार्ज कैप्स, उसकी वजह से ये डेटा अफेक्ट हो रहा है। आने वाले समय मेरी उम्मीद है कि जो 2 या 3 महीने कंसोलिडेशन का जो समय है मार्केट्स के लिए, ये जब निकल जाएगा तो यहाँ पर प्रदर्शन बेहतर होगा। और मार्केट्स, मुझे लगता है कि ये बता रहा है हमें कि मीडियम टर्म में थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद मार्केट्स में इंप्रूवमेंट आ सकती है।
1: और SIP के बढ़ने का क्या कारण?
0: देखिए, SIP एक फॉर्चुनेटली एक बहुत ही स्टेबल एक तरीका है मार्केट में पैसा डालने का, जो पैसिव इन्वेस्टर्स हैं, जो रोज़मर्रा में मार्केट को नहीं देखते हैं, तो ये SIP की वजह से हमारे भारतीय बाजारों में काफ़ी स्थिरता आपने देखेंगे, स्टेबिलिटी है। और जो FIIs का इतनी सेलिंग हमने एब्जॉर्ब करी है, वो भी कुछ हद तक उसका श्रेय जो है वो SIPs को जाता है। तो ये एक स्टेबल ट्रेंड है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव अभी आने वाला है, और थोड़ा बेहतर ही होगा आने वाले समय में।
2: And a quick comment on the increase in debt funds.
0: So Gauram, what happens is that whenever money... So debt funds is purely parking of money by corporates.
2: Reflection of the volatility.
0: And if people are avoiding large caps in the time being, then they will park money for short term in debt funds. But debt fund flows are very, very volatile. So this month you may have seen 1 lakh crore inflow. Next month you might see 1 lakh crore outflow. Okay. This is a typically short term money. This is not really long term invested in the Indian debt markets.
2: So wait and watch is a lot. What a lot of retail investors and investors
0: Absolutely.
2: Are doing.
0: And retail investors are... tilting towards higher risk, which is basically mid caps and small caps.
2: Right. Moving on to our next story, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has informed that the progress of area coverage under Kharif crops has recorded more than 967 lakh hectare area as of the 7th of this month. Meanwhile, the government has said that it is continuously monitoring the evolving monsoon situation and the possible impact of El Nino conditions on agriculture in close coordination with the India Met Department. The Minister of State for Agriculture and Farmer Welfare, Mr. Ram Nath Thakur, said this in a written reply to a question in the Lok Sabha today. He informed that district agriculture contingency plans have been updated for 15 states covering 342 districts, which are likely to receive below normal rain.

0: rainfall. Quickly again, Puneet. So fears of actually the monsoon completely, skewing up production, that somewhat receded?
1: Yeah, that has really receded a lot. And I think it's a big relief for the economy.
0: Absolutely. The Reserve Bank of India governor has called on Indian banks to adopt artificial intelligence with a clear focus on innovation, accountability and customer trust. Addressing the 2026 edition of Back on Mumbai, the RBI governor said AI could transform Indian banking by improving credit delivery, customer service, financial inclusion, operational efficiency and fraud detection.
2: एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में आज 0.7% की बढ़त हुई, जबकि जापान के बाजार छुट्टी के कारण बंद रहे। वहीं प्रमुख यूरोपीय इंडेक्स बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी के डेक्स में 0.2% की बढ़त हुई, जबकि लंदन के फुटसे 100 में मामूली तेजी आज देखी गई थी। पुनीत, अभी कुछ समय पहले हम लोग एआई के बारे में बात कर रहे थे, उससे रिलेटेड मार्केट की अगर हम बात करें तो साउथ कोरिया का मार्केट बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव के दौर से गुजरा है, लेकिन अभी जो मौजूदा आर्थिक अस्थिरता की हम बात करें, स्थिरता तो नहीं कहना चाहिए, उसका असर लग रहा है कि आपको एशियन मार्केट्स में ज्यादा पड़ रहा है?
1: देखिए, एशियन मार्केट्स में काफी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी और बहुत हमने तेजियां देखी, फिर बहुत बड़ी करेक्शन मार्केट्स में देखी। मुझे लगता है अब कुछ कंसोलिडेशन, अब कुछ जो एक इनिशियल एक अफरा तफरी थी वो कुछ कम होगी और बाजार अब यहाँ पर कंसोलिडेशन होकर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पर शायद चलेंगे, वो अच्छा भी है मतदानों के लिए।
2: और चिप सेक्टर से क्या उम्मीद देखी जा सकती है?
1: देखिए, चिप सेक्टर अच्छा सेक्टर है, लेकिन वहाँ वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई थी तो हमने देखा है कि बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है और कुछ हद तक वो पैसा रोटेट होकर इंडियन मार्केट की तरफ आया है।
0: So when we are looking and we'll just read the US markets, but after that your comment on, so now are world markets moving more on domestic issues or domestic this thing or geopolitical still?
1: So there is no longer this global trend in the markets now. We see the US markets move in a different direction. So right now they're kind of disconnected with each other. It happens in certain times, right. But right now they're not moving in like following each other.
0: Right. So let's see where the US markets are moving. Most US equities closed lower yesterday as uncertainty over a possible peace deal between the United States and Iran pushed oil prices higher. Among major indices, the Nasdaq Composite Index declined 0.3%, the Dow Jones Industrial Average dipped 0.1%, while the S&P 500 fell marginally. Moving to crude oil prices now, and Puneet will of course take your comment on this also. Global crude oil prices paired early gains today. Brent crude was trading nearly unchanged at $87.75 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.1% up at $82.21 per barrel when reports last came in. So countries realigning their oil policies and all, even for the long term in the future, even if the Middle East thing gets sorted out. But they're saying, we really can't be so dependent again. You think that's going to happen?
1: Absolutely. I think the oil trade is being rewritten all over. And I think next 10 years, we'll see the oil markets being very different from what they are today. So it's a good thing. It's probably a geopolitical commodity right now. But going forward, I think this will be de-risked to a large extent. And the dominance of the Middle East in the oil trade, I think that will decline over the next 10 years.
2: Puneet, agar oil sector ki hum baat karte hain, to kacche tel ki kimton ko lekar ke lagatar एक चिंता का माहौल देखा गया है पिछले कुछ समय में। भारत के नजरिए से अगर देखें, खासतौर पे ऐसी स्थिति में हम तेल को बड़ी मात्रा में आयात करते हैं, क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है? क्या लगता है कि आने वाले समय में कैसी स्थितियां बन सकती हैं हमारे लिए?
1: देखिए निखिल, अभी जो हमें कंपनी जगत के नतीजे आए हमारे सामने, ये बात साफ है कि कॉस्ट प्रेशर्स इस तिमाही में बहुत ज्यादा थे और कंपनीज के मार्जिन पर भी असर पड़ा उसका। तो भारतीय इकोनॉमी जो है वो बहुत सेंसिटिव है और एनर्जी प्राइसेस को, क्योंकि लार्जली बिकॉज हम 80-90% एनर्जी इंपोर्ट करते हैं अपनी, तो उसका असर भारतीय कंपनियों पर, हमारी इकोनॉमी पर बहुत गहरा पड़ता है। अभी तक सरकार ने उसको अच्छा मैनेज किया है, पर मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म डीरिस्किंग पॉलिसी जरूर भारत को चाहिए होगी। हम इस तरह से डिपेंडेंट नहीं रह सकते ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर या अनसर्टिनिटी के ऊपर। तो मुझे मेरा अपना अनुमान यह है कि वो पॉलिसीज भी आएंगी, भारत अपने भी एनर्जी व्यापार को बढ़ाएगा, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है हमारे लिए।
2: इस पे यूएस मार्केट का कैसा असर देखने को मिल रहा है, क्या इंपैक्ट डाल रहा है?
1: देखिए, एनर्जी प्राइसेस जो है उससे यूएस मार्केट्स पर तो देखिए फर्क पड़ ही रहा है, बिकॉज वहां पर जो पॉलिसी है उसको सीधा सीधा वो असर डालती है। वहां पर मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, उसकी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंपैक्ट पड़ेगा। पर अगर आप देखें तो यूएस मार्केट ने काफी हद तक इसको दरकिनार करके और ज्यादातर एआई ट्रेड और टेक्नोलॉजी ट्रेड पर ध्यान दिया है और वहां पर उसका असर ज्यादा है
2: जी। अब गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं। सोना 1.4% की बढ़त के साथ 152,800

0: तो 3 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी 1.7% की तेजी के साथ 2,35,352 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। गोल्ड और सिल्वर पर आपके क्या कमेंट्स होंगे, पिछले कुछ दिनों में एक ऊपर चढ़ने का सिलसिला हम देख रहे हैं।
1: देखिए जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स, उसका सीधा असर अगर आप देखें तो ऑयल, डॉलर और सोना चांदी, जो इसका जो वो बना हुआ है
0: कॉम्बिनेशन
1: बना हुआ है। और जैसे डॉलर इंडेक्स में हमने गिरावट देखी, इंटरेस्ट रेट्स कम होने की संभावना हुई, तो वहां पर गोल्ड के दाम पड़े।
0: जी पुनीत जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद निखिल।
2: एब्सोल्युटली, थैंक यू पुनीत, वंडरफुल हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। एंड नाउ लुक एट द हेडलाइंस once again. Benchmark domestic indices fall by nearly 0.5%. Sensex drops around 400 points. Nifty settles below 24,500. Global ratings agency Fitch affirms India's sovereign rating at BBB- with a stable outlook. Says country's economy remains strong despite headwinds. And stocks to be replaced in NSE indices. Changes to take effect on 30th of September this year. That's all for today. Namaskar.
0: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी और लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया। लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। यह विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
5: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का भी आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग है तथा इसे निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
6: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
4: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सोवरेन रेटिंग BBB पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा कि यह भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने भारत के लिए स्थिर दृष्टिकोण भी बनाए रखा है और कहा है कि पाकिस्तान कि पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न ऊर्जा संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में बनी हुई है। एजेंसी ने अनुमान व्यक्त किया है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षा विवाद को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची सहित कई इलाकों में प्रभावी रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
7: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुचा कुमार। The Parliament has passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. When the Upper House met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. The bill aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. The legislation also proposes to establish a National Tribunals Commission. The Rajya Sabha was adjourned for the day after completing its business. Earlier in the day, the Upper House witnessed continuous uproar over various issues, including the alleged police action during students' protests over the NEET matter. The Lok Sabha has passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. The Lok Sabha has also passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. Both the bills were passed without discussion amid uproar by opposition over several issues. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju accused the Congress and opposition parties of running away from a discussion on the students' protest, saying that the government is ready for a detailed discussion on the issue. Speaking to reporters at the Parliament premises, Mr. Rijiju said Home Minister Amit Shah was also ready to respond to the issues raised by the opposition, but they are not allowing the House to function. Meanwhile, Congress MP Pawan Khera alleged that the Home Minister was avoiding making a statement on the matter. India today reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said in matters relating to the border areas between India and China, the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance for New Delhi. The spokesperson said this was also reiterated at the recently held 36th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs.
6: India-China border affairs, which was held on 6th, and you already aware of the statement that we put out. At this meeting, the two sides engaged in frank discussions and reviewed the situation along the line of actual control. The Indian side again underlined that maintaining peace and tranquility in the border areas is essential for the overall development of bilateral relations. It was agreed to continue to use existing mechanisms, diplomatic and military channels, including the WMCC, local commander-level meetings, and other agreed mechanisms to resolve outstanding issues and avoid misunderstanding and miscalculation along the line of actual control.
7: The ongoing Har Ghar Tiranga campaign is gaining significant momentum across the country ahead of the Independence Day celebrations, inspiring citizens from all walks of life to come together in a collective celebration of India's national pride and spirit of unity. Sharing a video on a social media platform, Prime Minister Narendra Modi urged countrymen to celebrate Independence Day with pride and grandeur, making a pledge to build a Viksit Bharat. He further urged

0: শোভনন্দা বলেন, যে কোনো রকম সমস্যা দ্রুত সমাধান করার চেষ্টা চলছে। অবসরপ্রাপ্ত যে কোনো ব্যক্তিকে সবসময় অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতেও তা হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত সিজিএইচএস এর এডিএইচজি বন্দনা দাস বলেন, 17টি চক্ষু হাসপাতাল সহ মোট 65টি হাসপাতাল এখন সিজিএইচএস এর অধীনে রোগী পরিষেবা দিচ্ছে। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস এবং ধর্ষণের অভিযোগে ক্রিকেটার অভিষেক পোরেলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জানা গেছে, 3.5 বছর ধরে ওই কর্ণাটকের এক ডাক্তারি পড়ুয়ার সঙ্গে ক্রিকেটারের সম্পর্ক ছিল। আজ অভিষেককে চুচুড়া আদালতে তোলা হলে 3 দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত ঘূর্ণাবর্তটি আগামীকালের মধ্যে নিম্নচাপ এলাকায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। এর ফলে আগামীকাল থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে। শেষ করার আগে স্থানীয় সংবাদের বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উৎসাহের সঙ্গে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। পশ্চিম মেদিনীপুরে বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে
1: ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए आयोग गठित करने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जवाब दिए जाने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र को बदलने का नहीं है, बल्कि इसका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए सदस्यों ने कहा कि देश में न्यायाधिकरण व्यवस्था को मजबूत करने से अदालतों में लंबित बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। कुछ सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रीय आयोग के गठन से न्यायाधिकरणों के गठन में पारदर्शिता बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के न्यायाधीशों की बहुत कम नियुक्ति की जा रही है। इस पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम करता है। इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका केवल कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देना भर ही है। उन्होंने कहा कि वह देश के पहले ऐसे आदिवासी हैं जो कानून मंत्री बने तथा डॉक्टर बीआर अंबेडकर के बाद कानून मंत्री बनने वाले दूसरे बौद्ध हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी में होगा और इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होंगे। इनमें 2 न्यायिक और 2 तकनीकी सदस्य होंगे। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस प्रस्तावित आयोग के अध्यक्ष पद के लिए पात्र होंगे। विधेयक के मसौदे के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने हाल में न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि वे शक्तियों के पृथककरण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विपरीत हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी निर्देश दिया था जो स्वतंत्र हो, जिसमें पेशेवर विशेषज्ञता हो तथा विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन तथा नियुक्ति के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था अपनाई जाए। इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद 2021 का अधिनियम निरस्त हो जाएगा। चर्चा में बीजत के सस्मित पात्रा, द्रमुक के तिरुचि शिवा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, रांगकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भाजपा के सुभाष बराला, डॉ सतीश पुनिया, सुजीत कुमार, महेश केवट, स्वाति मालीवाल, मयंक कुमार नायक, बसपा के रामजी, बीएसआर के रविन्द्र चंद्र वद्दे राजू और अन्ना द्रमुक के आईएस इनबादुरे ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए द्रमुक के तिरुचि शिवा ने कहा कि आयोग के

अध्यक्ष का मनोनयन भारत के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी देखना चाहिए कि न्यायाधीश के न्यायाधिकरण के आदेश का पालन किया जा रहा है या नहीं। बीजत के सस्मित पात्रा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि न्यायाधिकरण सुधार केवल न्यायाधिकरण सुधार ही नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक सुधार भी है। उन्होंने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को भी इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। इनका चयन सावधानी से और उत्कृष्टता के आधार पर किया जाना चाहिए। अन्नाद्रमुक सदस्य आईएस इन्बादुरै ने कहा कि नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड कामकाज में पारदर्शिता लाने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण में रिक्तियों को यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए। बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू ने कहा कि आयोग को निष्पक्ष तथा स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए और समय समय पर उसके काम की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरणों की पीठ में पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। भाजपा की स्वाति मालीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को यह अधिकार दिया जाए कि वह समय समय पर यह विश्लेषण करे कि किन न्यायाधिकरणों में क्षेत्रीय पीठों की जरूरत है। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले जब न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पर चर्चा शुरू हुई, तब उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से केवल विधेयक से जुड़े विषय पर बोलने का आग्रह किया। उन्होंने शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति नहीं दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष बोलने दो के नारे लगाए और हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने व्यवस्था के प्रश्न उठाने का प्रयास किया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की भी मांग की तथा राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी को लेकर नारा लगाए। उपसभापति हरिवंश ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी, लेकिन उन्हें सदन में चल रहे कार्य यानी विधेयक पर ही अपनी बात रखने को कहा। श्री खड़गे ने राम मंदिर मुद्दे पर बोलने का प्रयास किया, लेकिन आसन ने इसकी अनुमति नहीं दी। उपसभापति ने अगले वक्ता का नाम पुकारा। इस पर विरोध व्यक्त करते हुए INDI गठबंधन दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। हालांकि विधेयक पर चर्चा जारी रही और कानून मंत्री के जवाब के बाद उसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख लिया गया। विशेष उल्लेख के जरिए अन्नाद्रमुक के IS इन्बादुरै, भाजपा के ब्रजलाल, जोगेन मोहन, डॉ के लक्ष्मण, लक्ष्मी वर्मा, कविता पाटीदार, सुभाष बराला, सुष्मिता देव, स्वाति मालीवाल, एस सिल्वा गनबेती, मनोनीत सुधा मूर्ति और YSR कांग्रेस पार्टी के गिल्ला बाबूराव ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए और सरकार से उनके समाधान का अनुरोध किया। इसके बाद शाम 4:30 पर उच्च सदन की बैठक को कल सुबह 11 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद एक बार 12 तक और फिर दोपहर 2 तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए कहा। सभापति ने बीजू जनता दल के डॉ. संतृप्त मिश्र को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री मिश्र ने ओडिशा में उर्वरक की उपलब्धता से जुड़ा मुद्दा उठाया और अपनी बात ओडिया भाषा में रखी। इस दौरान विपक्षी सदस्य आसन से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। जब बीजद सदस्य डॉ. संतृप्त मिश्र ने अपना वक्तव्य समाप्त किया या करने वाले थे, तभी खड़गे उठे और उन्होंने राम मंदिर से संबंधित नया मुद्दा उठाने की मांगी। नेता प्रतिपक्ष के इतना कहते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 तक के लिए स्थगित कर दी। जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी का मुद्दा उठाने की मांग की। सभापति ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि उन्होंने सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी झारखंड से जुड़ा मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि वह राज्य का विषय है। राधाकृष्णन ने कहा कि विपक्ष के नेता राज्य से जुड़े विषय को उठा रहे हैं, इसलिए इसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हर दिन एक ही विषय उठाकर सदन की कार्यवाही बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सभापति ने कहा कि आप जिस विषय को उठा रहे हैं वह राज्य का विषय है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सत्ता पक्ष के सदस्य भी कुछ राज्य से जुड़े मुद्दे उठा

करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें भी यह अनुमति नहीं दी। वे झारखंड का मुद्दा उठाना चाहते थे और मैंने कहा कि यह राज्य का विषय है, मैं किसी भी राज्य के विषय को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। सभापति ने श्री खरगे और हंगामा कर रहे अन्य सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने को कहा और सूचीबद्ध प्रश्न लेकर कार्यवाही आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही

0: के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:25 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। संसद के मानसून सत्र के चौथे सप्ताह के दूसरे दिन की कार्यवाही भी पिछले 3 सप्ताह की तरह हंगामेदार रही और आज भी सदन में प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:00 सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल के 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। श्री राय ने कहा कि केरल सरकार ने इसका कारण दिया कि मलयालम भाषा में राज्य का नाम केरलम है, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में इसे केरल दर्ज किया गया है। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री शाह की जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि NCDC का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक उत्पादन और पशुधन संबंधी सेवाओं तक सीमित था, लेकिन अब NCDC प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, आयात और निर्यात से संबंधित योजना बनाने और उन्हें लागू करने का भी काम कर रहे हैं। विधेयक के अंतर्गत NCDC को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनेट्टी ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाकर बैठने और विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने का बार बार आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहे हैं, आप लोग सीट पर जाकर बैठिए। तेनेट्टी ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक पर भी नहीं बोला। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी दलों के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जब विद्यार्थियों के आंदोलन पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग पर सरकार ने सहमति दे दी है तो फिर विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर चलाना चाहिए। देश की जनता चाहती है कि सदन चले और सभी विषयों पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी उन्होंने सभी दलों से सदन चलाने का आग्रह किया था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें सत्ता की जवाबदेही तय होती है और कार्यपालिका में पारदर्शिता आती है। विपक्ष की विद्यार्थियों से संबंधित प्रमुख मांग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में स्पष्ट किया कि गृह मंत्री इस विषय पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, इसलिए अब आप सदन चलने दें। उन्होंने सदन के भीतर तख्तियां लाने पर भी आपत्ति व्यक्त की और कहा कि यह संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आप लोग सहयोग करें, सदन नहीं चलने से मन व्यथित होता है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 11:04 पर सदन की बैठक अपराह्न 2:00 तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: गाने कथाएं गोल्डन समय आपनी सुनछेन 100.1 FM गोल्ड 100.1 FM गोल्ड।

0: করেন সে কথা নিয়েই এগিয়েছেন আপনি।
1: দেখিনি কে আছেন ফোনে। হ্যালো,
2: আপনি যে ব্যক্তি
0: ছিলেন কেউ এই মুহূর্তে তাকে আমরা পাচ্ছি না, দেখা যাক। 2 2 4 8 8 0 8 5 আমরা কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলবো।
1: লিসনার চলে এসেছেন, দেখে নেব কে আছেন। হ্যালো
3: হ্যালো,
0: হ্যাঁ বলুন
3: দিদি ভাই, দুজনকে নমস্কার জানাই, বেলুড়া থেকে লক্ষ্মণজন দা বলছি। দিদি
0: বলুন,
3: বুঝি মিথ্যা জয় এইটাই বলছে, মিথ্যা বললে কি হবে, মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যাই থাকে দিদি, আর সাময়িক সেয়ায় তো মিথ্যা বলে তো জয় করতে পারে, কিন্তু সত্যিটা সামনে আসবেই। বলে না চোরের মার বড় গালা, সেইটা আর কি মিথ্যা কথা, কিন্তু মিথ্যা কথা বললে কি সত্যিটা সবসময় আসবে, এইটুকু বললাম দিদি। নমস্কার নেবেন, ভালো থাকবেন,
0: অনেক ধন্যবাদ,
1: অনেক ধন্যবাদ। আমাদের আজকের বিষয় ছিল হাতে, যদিও আর সময় খুবই কম আমাদের, দেখে নিতে হবে আর কোনো, একটু SMS এর দিকে চোখ রাখবো, প্রচুর SMS কিন্তু আমরা পেয়ে থাকি। যেমন SMS পেয়েছি পায়েল ব্যানার্জি বেলঘরিয়া থেকে। আচ্ছা, পায়েল লিখছে, সত্যের জোর বেশি মিথ্যের জোর বেশি নয়, মিথ্যে দিয়ে মানুষের চোখে ধুলো দেওয়া যায়, কিন্তু তা সাময়িক, চোখের সামনে পর্দা সরে গেলে মিথ্যের আর কোনো জায়গা থাকে না, সত্যের এই আলো লাগুক সবার প্রাণে, আর তাছাড়া বোধহয় লিখতে চেয়েছে মিথ্যে এক ধরনের অন্যায় আর এই মিথ্যে কখনোই ঠিক নয়। বেশ, পায়েল লিখেছে সেটা বাউরিয়া বৌলখালী থেকে। শান্তনু ঘোষ কি লিখেছেন,
0: লিখছেন মিথ্যে জোর বা অহংকার বেশি দিন টেকে না, সত্যের জয় চিরকাল হয়, মিথ্যা ঢাকতে যতই চিল চিৎকার করা হোক না কেন তার আয়ু খুব কম।
1: বেশ, শান্তনু ঘোষ লিখছেন সে কথা, চলে যাব এর পরে কে আছেন তার দিকে। হেমন্ত মুখার্জি, না সেটা বোধ হয় উনি একটা অন্য মেসেজ লিখেছেন। আচ্ছা চলে যাব এর পরের মেসেজে। কুলপি থেকে তারক লিখছেন, মিথ্যেবাদী কখনো আই কন্ট্যাক্টে কথা বলে না, 3-4 বার এক কথা জানতে চাইলে অনেক সময় সত্যি বলে ফেলে, আর এদের একটাই শাস্তি, যেদিন সত্য বলে সে কথা কেউ বিশ্বাস করে না। মিথ্যে সত্য নয় বলেই বলেইনি যে কে প্রমাণ করছে। আচ্ছা কি লিখতে চেয়েছেন, এই জায়গাটা একটু জটিল হয়েছে, সত্য শাশ্বত তার কোনো প্রমাণ দরকার পড়ে না, বোধহয় লিখতে চেয়েছেন মিথ্যে নয়, মিথ্যের প্রমাণ দরকার হয়, সত্যর কোনো প্রমাণ দরকার হয় না, এ কথাই লিখতে চেয়েছেন।
0: সত্যের তো কনফিডেন্সই আলাদা না, মিথ্যার জোর চিরকালই বেশি, এই বিষয় নিয়ে আজকের আপনার কথা।
1: সত্য খুব আস্তে আস্তে বললেও সত্যটা কিন্তু সেটাই প্রাধান্য পায়।
0: আপনারা আপনাদের মতামত জানিয়েছেন,
1: লিসনার আছেন, চলে যাব ফোনে দেখে।
0: ছোট্ট করে নমস্কার, কে আছেন?
4: আমি বাউরিয়া থেকে বলছিলাম, গৌর করে।
0: বলুন।
4: সততাকে তোয়াক্কা করে না যারা, তারা ঘৃণা নিশাচর প্রাণী। সততা মানব জীবনের এক,
1: আপনি রেডিও সেটটা আগে মিউট করুন, এবার বলুন।
4: সততা মানব জীবনের এক মূল্যবান সম্পদ, তেমন সততাকে তুচ্ছ করলে আসবে পদে পদে বিপদ, তাই সকলে জীবন সদা সততার অনুশীলন করা চাই, সততাকে অস্বীকার করে শান্তিতে বাঁচার উপায় নাই।
1: ঠিক,
4: সততাকে আশ্রয় করলে কষ্ট হয় কোনকাল, কিন্তু সততার পথ চলবে চিরকাল অনন্তকাল।
1: ঠিক বলেছেন, শুনতে থাকুন, চলে যাব পরের মেসেজে। সপ্তর্ষি মজুমদার বরানগর থেকে লিখছেন, অনেক সময় মিথ্যার জোরে দশচক্রে ভগবান ভূত হয়, সত্য প্রমাণ করতে সময় লাগে, গুজব ও মিথ্যা রটানোর পরিমাণ পরিণাম যে কত ভয়ঙ্কর তা আমরা বাস্তবে দেখতে পাই, এই ভয়ঙ্করতা বুঝিয়ে দেয় সত্য কত গুরুত্বপূর্ণ, সত্য অবিনশ্বর চিরন্তন, সত্য কখনো চাপা থাকে না, দেরিতে হলেও সত্যের প্রকাশ ঘটবেই, তাই মিথ্যার জোর কোনোকালই বেশি নয়। চলে যাব লাস্ট মেসেজ সম্ভবত আজকের,
0: ছোট্ট মেসেজ। বেলুড় থেকে চন্দনা মজুমদার বলছেন, সত্য বড়ই সত্য, এই সত্যকে মেনে চলতে গেলে অনেক কষ্ট হজম করতে হয়, কিন্তু শেষ অবধি সত্যেরই জয় হয়। আমাদের সঙ্গে আর কোনো বন্ধু যদি হোয়াটসঅ্যাপ করেন বা মেসেজ করেন, খুব কম সময়ে ছোট্ট করে নেব। কে আছেন?
5: মনিরুদ্দিন বলছি, দক্ষিণ কাপড়ে।
0: বলুন, চট করে বলুন।
5: যেমন মাল ঢাকা যায় না, সেই রকম মিথ্যা দিয়ে সত্যকে ঢাকা যায় না, মিথ্যা দিয়ে প্রতারণা করা যায়, বোকা বানানো যায়, কিন্তু কোনোদিন জয়ী হতে পারে না। নমস্কার।
0: বেশ, অনেক ধন্যবাদ। আমাদের স্টুডিওর ঘড়ি বলছে এখন রাত 8:44:20, অর্থাৎ আজকের মতো আপনার কথা থেকে বিদায় নেব মনীষা আর সুস্মিতা, কিন্তু হ্যাঁ ফিরবো ঠিক রাত 9:30 আজকের আরোগ্য নিয়ে। সঙ্গে থাকবেন ডাক্তার শুভম ভট্টাচার্য, হেমাটোলজিস্ট, বিষয়ে সিকল সেল অ্যানিমিয়া। আপনারা থাকবেন আমাদের সঙ্গে 100.1 এফএম গোল্ডে।
1: আপনার যাবতীয় প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়ে যাবেন আবারও আরোগ্য অনুষ্ঠানে। সুস্মিতার মনীষা রয়েছে সেসব প্রশ্ন ডাক্তারবাবুর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং তার উত্তর শুনে নেওয়ার জন্য। দেখ, শোনা হচ্ছে এবং দেখা তো হচ্ছে বটেই, কারণ ফেসবুক লাইভে থাকবো আমরা।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
8: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए।
7: लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
9: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
7: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
10: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
7: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
11: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
7: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
12: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
7: इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। राज्य में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है।
13: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
7: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
13: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
7: इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शहर केवल ईंट और कंक्रीट से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के विकास के इंजन हैं। मुंबई में आयोजित ब्रिक्स मैत्री नगर सम्मेलन में उन्होंने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि वे 21वीं सदी के लिए नागरिक केंद्रित शहर बनाने के लिए अपने अनुभव, प्रौद्योगिकी और नवाचार साझा करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल से घोषित अपराधी गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया। वो पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा और हत्याकांड में शामिल था। आरोपी को बाद में कलकत्ता की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब पुलिस ने पिछले 5 दिनों में फिरोजपुर और अमृतसर के सीमावर्ती जिलों से 10 आरोपियों से करोड़ों रुपए की 80 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने आज फिरोजपुर में सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 किलो से अधिक हेरोइन की खेप बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये समाचार

0: हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
1: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाए, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आज कुपवाड़ा जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा है कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय बैंकों से नवाचार, जवाबदेही और ग्राहक विश्वास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने पर बल देते हुए AI को अपनाने का आह्वान किया है। मुंबई में RBI गवर्नर ने कहा कि AI ऋण वितरण, ग्राहक सेवा, वित्तीय समावेशन, परिचालन दक्षता और धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार करके भारतीय बैंकिंग में क्रांति ला सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण भूस्खलन से राज्य के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 204 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को बृहस्पतिवार को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये छात्रवृत्ति और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

কানে কথায় গোল্ডেন সময়, আপনি শুনছেন 100.1 FM গোল্ড, 100.1 FM গোল্ড।

0: कि ये विधेयक आधुनिक स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
2: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता का कोई इसे बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टिमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी, पश्चिमी बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Parliament passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. The legislation aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. It also proposes to establish a National Tribunals Commission. When the upper house met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. Replying to discussion on the bill, Mr. Meghwal said, the new bill has a provision to establish the National Tribunals Commission, which will be chaired by a former judge of the Supreme Court or a former Chief Justice of a High Court. The Rajya Sabha was adjourned for the day after completing its business. The Lok Sabha has passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. Speaking on the bill, Minister of State for Home Nityanand Rai said, Union Cabinet in February this year approved the proposal to change the name of the state to Keralam and to introduce the necessary legislation for amendment in this regard. The lower house has also passed the National Cooperative Development Corporation NCDC Amendment Bill 2026. The legislation aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. Both the bills were passed without discussion amid a row by the opposition over several issues. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. India Today reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Radhir Jaiswal said, in matters relating to the border areas between India and China, New Delhi always emphasized that the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance for the overall development of bilateral relations with China. Replying to another query, Mr. Jaiswal highlighted that human rights violations being committed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and other parts of the neighboring country.
4: In the last several months, we have seen that during the elections and before that also, large-scale protests were held in Pakistan-occupied Kashmir. Public discontent were answered with bullets and blackouts and repression and oppression, and more than 90 people have been killed and many more have been injured. This has made news across the world. There have been grave violations of human rights, and I think it is time that the international community take note of what's happening there and hold that country responsible for its atrocities.
3: On Indian High Commissioner Dinesh Trivedi meeting Bangladesh Prime Minister Tariq Rahman, Mr. Jaiswal said, New Delhi has extended an invitation for a bilateral visit as well as for the BRICS outreach session which will be held in the national capital. Protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK are set to go global from Thursday to expose state-sponsored terror by Islamabad. The Awami Action Committee, AAC, has urged Kashmiris across the world to hold rallies and draw international attention to the deadly force being used by the Pakistani establishment against the people of POJK. The AAC has also decided to observe 14th of August as a Black Day, coinciding with Pakistan's Independence Day. US space agency NASA has invited Indian space research organization ISRO to join its moon-based program, building on the two countries' partnership under the Artemis Accords. India and US have agreed to advance discussions for cooperation on open scientific data sharing under the Accords. The ninth meeting of the India-US Civil Space Joint Working Group was hosted by India on the 5th and 6th of this month at the ISRO headquarters in Bengaluru. The ongoing Har Ghar Tiranga campaign is gaining significant momentum across the country ahead of the 80th Independence Day celebrations, inspiring citizens from all walks of the life to come together in a collective celebration of India's national pride and spirit of unity. The movement, which will continue till the 17th of this month, coincides with the 150th anniversary of Vande Mataram this year, making the occasion even more heart-stirring for every patriot. And that is the end of this news bulletin.
5: গানে কথায় গোল্ডেন সময়, আপনি শুনছেন 100.1 FM Gold, 100.1 FM Gold, FM Gold. বলবেন আপনি, শুনছেন দুনিয়া ডট কম 100.1 FM গোল্ডে, দুনিয়া ডট কম, দুনিয়া

শুনছেন duniya.com 100.1 FM গোল্ডে duniya.com

हो राधे श्याम की जय हो सियाराम की और जय हो बंबई धाम की। ई है